0: Good morning, you're watching NDTV. I'm Shivani Singh Rana. Lots lined up on the show today, but first the headlines. CJP's Delhi Chalo protest against CEC Gyanesh Kumar reaches the capital despite police denying permission. Around 30,000 security personnel are deployed with all 15 districts on high alert. The opposition marched against the CEC demanding his resignation over alleged vote chori. Rahul Gandhi led the India Bloc's charge while BJP accused Congress of using the president for political mileage. JNU has sacked Congress MP and Professor Bimal Akurjam after upholding 9 harassment allegations. NDTV has accessed the probe report. Following complaints by 11 female students, the BJP has targeted Congress, while Akurjam denies the charges and calls it a witch hunt. TVK has scored a double win in the bipole, signalling a breakthrough for Vijay. The results pose a setback for the AIADMK, while the political battle intensifies, with Vijay claiming a moral victory and Stalin claiming it a victory of betrayal. The US eases Russian fuel sanctions, with Trump announcing a diesel deal after talks with Putin. Russia is ready to supply 300,000 tons of fuel amid discussions on Ukraine and Iran. Elon Musk hits out at Reliance's Mukesh Ambani amid Starlink row, accusing him of exploiting the people of India and blocking Starlink. The CJP is bringing its protest against CEC Gyanesh Kumar to Delhi with a Delhi Chalo call for demonstrations at the Jantar Mantar today. Despite police denying permission, around 30,000 police personnel, paramilitary personnel are expected to be deployed with all 15 districts on high alert. Now, roads are sealed, transport restrictions are in place and diversions are planned at 30 locations. Now, police are preparing for 6,000 to 7,000 protesters to have been, they've been told to exercise maximum restraint. But CJP leader Ashutosh Ranka is defiant, declaring, "We will not stop." Now, meanwhile, government sources tell NDTV that SIR issue is not as emotive as the NEET paper leak controversy. An internal six-city survey that said they found 72% backing the SIR process. There's some reactions coming in for the same. Let's listen in.
1: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक अपना डिटेल एडवाइजरी करी है जिसमें हमारे 30 स्ट्रेचेज हैं जहां पे हम लोगों ने ये जो टूवर्स नई दिल्ली की तरफ जो स्ट्रेचेज हैं जो अफेक्टेड हो सकते हैं वो हमने अपने पब्लिक को बताया है और हमने पब्लिक से आग्रह किया है कि हमारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट हमारे सोशल मीडिया पर अपडेट्स लेते रहे और जैसे अगर कहीं डेमोन्स्ट्रेशन होता है या कोई ऑब्स्टेकल आता है तो अकॉर्डिंगली हम उस पर डाइवर्जेंस प्लान बनाएंगे और अकॉर्डिंगली हम ट्रैफिक को जो है उसी समय रेगुलेट करेंगे और हमारे जो भी ट्रैफिक साइट है सोशल मीडिया है उस पे हमारा लेटेस्ट अपडेट आता रहेगा।
2: नहीं, पापों की हवा बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, ट्रेन बंद कर दी है, मेट्रो बंद कर दी है, सड़कें बंद कर दी है, हवा भी बंद कर देंगे, पानी भी बंद कर देंगे, लोगों का सोना भी बंद कर देंगे, लेकिन उससे प्रोटेस्ट रुकने वाली नहीं है। कल सुबह जंतर मंतर पर मिलते हैं साथियों,
3: थैंक यू। मिलेंगे सर, सब लोग मिलेंगे,
4: बिल्कुल रोका जाएगा, हाउस अरेस्ट किया जा सकता है,
2: करने दीजिए, सबको अरेस्ट करने दीजिए, हम तो बहुत दिनों से रेडी बैठे हैं अरेस्ट होने के लिए।
5: तो बिल्कुल ये सोचना चाहिए इस देश के तानाशाह को कि वो क्यों मेट्रो बंद कर रहे हैं, क्यों रेलवेज बंद कर रहे हैं, क्यों सड़कें बंद कर रहे हैं, क्यों सारी फोर्सेस कश्मीर से निकालकर, नक्सल एरिया से निकालकर दिल्ली में लाई गई है। ये इस देश के स्टूडेंट्स है, इस देश के युवा है जो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग अपना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट। उनको आप पाकिस्तानियों जैसा क्यों ट्रीट कर रहे हो, आप उनको अपने दुश्मनों जैसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं?
6: देखिए, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की परमिशन वो नहीं दिया उन्होंने। आज जब हियरिंग हुई है उसके पहले तो हमें नोटिस भेजा है कि प्रोटेस्ट नहीं करने की अनुमति दे रहे हैं वो। लेकिन जो ये सारा चीज़ है ये उनको 2 तारीख से पता है और सारे प्रोटेस्ट में हम इस चीज़ के खिलाफ है कि कोई भी चीज़ में आप क्यों किसी से बोल

0: course come back to you. At this moment, we have some reactions coming in from the Delhi police regarding the security situation in New Delhi this morning. Let's listen in.
1: हम पूरी तरह से तैयार हैं तीनों जिले में प्रॉपर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं लोगों से हम राफ्ता रख रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि परमिशन नहीं है तो इसलिए इसमें आप सहभाग न दें शांति बनाए रखें और हमें सहयोग दें और हमें सहयोग दें हमको भी सहयोग देंगे
2: बॉर्डर पर सर चेकिंग चल रही है
1: हाँ बॉर्डर पर भी चेकिंग चल रही है क्योंकि कहीं से यूपी गाज़ियाबाद या नोएडा से आने के जो लोगों के अगर चांसेस हैं तो उनको हम उनको रोकें और हम यूपी गाज़ियाबाद नोएडा इनके ऑफिसर्स के साथ भी टच में हैं ताकि हमारा तालमेल रहे और हम उनको आने से रोकें या वहीं पे उनको रोका जाए
3: ये जो बॉडी कैम है ये हमारे और दूसरों को प्रोटेक्ट के लिए है क्योंकि जो भी हम जहाँ भी लड़ाई में आता है जो आपने देखा होगा सीन की जो पुलिस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं अफसरों के ऊपर हमारे जो सही नहीं है और उसके थ्रू ये बॉडी कैम हमको सबको मिले हैं जो फील्ड में काम करते हैं तो ये बॉडी कैम इसको पारदर्शित करेंगे कि हमने टच करा है या नहीं करा है इसलिए
4: ये सेल्फ रिकॉर्डिंग है इसमें हम ऑन कर देते हैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म जो फ्रंट साइड जिनको हम प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ विजुलाइज होती है इस कैमरे के साथ और इसमें सेल्फ रिकॉर्डिंग है तो उसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं अकॉर्डिंग
0: The CJP is bringing its protest against CEC Gyanesh Kumar to Delhi with a Delhi Chalo call for a demonstration at Jantar Mantar today. Despite police denying the permission, around 30,000 police and paramilitary personnel are expected to be deployed with all 15 districts on high alert. Now, roads are sealed, transport restrictions are in place and diversions are planned at 30 locations. Now, police are preparing for 6,000 to 7,000 protesters and have been told to exercise maximum restraint. But CJP leader Ashutosh Ranka is defiant, declaring, "We will not stop." Meanwhile, government sources tell NDTV that SIR issue is not as emotive as the NEET paper leak controversy. An internal six-city survey, they say, found 72% backing the SIR process. There's some reactions coming in on the same. Let's listen in.
5: Delhi Traffic Police ने एक अपना डिटेल एडवाइजरी करी है जिसमें हमारे 30 स्ट्रेचर्स हैं जहाँ पे हम लोगों ने ये जो टूअर्स नई दिल्ली की तरफ जो स्ट्रेचर्स हैं जो अफेक्टेड हो सकते हैं वो हमने अपने पब्लिक को बताया है और हमने पब्लिक से आग्रह किया है कि हमारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट हमारे सोशल मीडिया पर अपडेट्स लेते रहे और जैसे अगर कहीं डेमोन्स्ट्रेशन होता है या कोई ऑब्स्टेकल आता है तो अकॉर्डिंगली हम उस पर डाइवर्जेंस प्लान बनाएंगे और अकॉर्डिंगली हम ट्रैफिक को जो है उसी समय रेगुलेट करेंगे और हमारे जो भी ट्रैफिक साइट है सोशल मीडिया है उस पे हमारा लेटेस्ट अपडेट आता रहेगा
6: इस देश के प्रधानमंत्री को इतना डर जो लग रहा है इस देश के यूथ से इस देश की जनता से वो क्यों लग रहा है क्या जरूरत पड़ी आपको सारे रेलवे बंद करने की क्या जरूरत पड़ी आपको सारे मेट्रोज बंद करने की इंटरनेट बंद कर दिया है रास्ते बंद कर दिए जम्मू कश्मीर से आर्मी बुलाकर आपने दिल्ली में डिप्लॉय कर दिए नक्सल एरिया से सीआरपीएफ की फोर्स बुलाकर आपने दिल्ली में डिप्लॉय कर दिए क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने ही देश के लोगों के साथ जंग छेड़ना चाहते हैं क्या ज्ञानेश कुमार आपको इतने ज्यादा प्यारे हैं कि आप अपने ही देश की जनता के ऊपर अपनी पुलिस फोर्स अपनी आर्मी फोर्स छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी का डर है और पता नहीं ज्ञानेश कुमार इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए उनके लिए अपने ही देश की जनता पर जंग छेड़ना चाहते हैं
7: देखिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की परमिशन वो नहीं दिया उन्होंने आज जब हियरिंग हुई है उसके पहले तो हमें नोटिस भेजा है कि प्रोटेस्ट नहीं करने की अनुमति दे रहे हैं वो लेकिन जो ये सारा चीज़ है ये उनको 2 तारीख से पता है और सारे प्रोटेस्ट में हम इस चीज़ के खिलाफ है कि कोई भी चीज़ में आप क्यों किसी से बोल रहे हैं कि परमिशन लेनी है हमने आपको बता दिया है आपको लॉ एंड ऑर्डर
8: Showing you the visuals of how Delhi police is using high-tech technology to take care of the security situation in the central Delhi area. We are showing you how drones are in fact being used so that 2 kilometers of the radius can in fact be taken care of. This is a drone that in fact covers 2 kilometers of the entire radius of this Janpath area that we are currently showing you on your screen. So you can clearly see that this is in fact being used so that anybody can be identified from the crowd and Delhi police can have a proper recording of all the incident that happens here at this very place. According to the intel that Delhi police has received. We are seeing that, you know, they are currently trying to fortify all the areas in and around the central Delhi area. This is the Janpath place, the Janpath road, where we can see 3 layers of barricading have been erected by the Delhi police and nobody without verification is allowed to enter from this very road so that they can in fact go through this road. This is the road that leads to the Jantar Mantar area as well and we are showing you how Delhi police officials are in

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित अनसुलझी, बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
0: The sharpest global voices decode a world between orders. Dr. Swarnim Wagle, General David Petraeus, Swami Sarvapriyananda, Mike Walsh, Nicholas Butts, and the NDTV World Summit, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, only on NDTV. After a smashing start, the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.
2: Welcome to the second edition of the NDTV World India Japan Summit.
3: Deep localization. What

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित अनसुलझी, बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

एक नई दहलीज पर अनिश्चित अनसुलझी बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

एक नई दहलीज पर अनिश्चित अनसुलझी बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।

0: सुबह
1: बाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा, सबका राजा आकर
2: मसाला। दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित, अनसुलझी, बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज। दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित, अनसुलझी, बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
2: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
3: यू नो डिजाइन्स कितने हैं, लाख से भी ज्यादा डोर,
4: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
5: एक परिवार, अटूट भरोसा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित अनसुलझी, बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेंको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
3: जिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड,
4: एंड सेंको सपोर्ट्स एनवायरनमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
5: एक परिवार, अटूट भरोसा।

0: US President Trump's double standards on Russian oil after threatening half the world and imposing tariffs for the purchase of Russian oil on countries like India and China. The US has just signed a huge deal to buy its own Russian oil. Elon Musk hits out at Reliance's leadership, calls them Prime Minister Ambani amidst the Starlink row, accuses Ambani of exploiting the people of India and blocking Starlink. Big development ahead of the CJP's planned Dilli Chalo protest. CJP leaders Abhijit Dibke, Saurav Das and Ashutosh Ranka have been detained after landing in Delhi and are being held at three separate locations in Delhi, Gurugram and Dwarka, which is also in Delhi. Dibke has called the move dictatorship, alleging that the Delhi police boarded his flight to arrest him along with others. I'm going to play out that clip for you in just a moment. He's accused the government of blocking what was intended to be a peaceful protest, while Saurav Das said the state is at war with its citizens. With this, the CJP has vowed to press ahead with its protest, demanding the immediate release of its detained leaders. Meanwhile, the police have also detained demonstrators at several locations across Delhi, including Jantar Mantar and Connaught Place, as the CJP's planned protest faces restrictions.
1: हम लोगों को उठाने के लिए दिल्ली पुलिस प्लेन में ही आ रही है. You can see it. ऐसा तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भी नहीं किया था. All we wanted to do is a peaceful protest.
2: This is something not even Indira Gandhi had done. This is dictatorship where Delhi police has entered in the flight and trying to arrest us. आ जाओ कर लो अरेस्ट. अरेस्ट होने के लिए आए हम. अरेस्ट होने के लिए आए. आ जाओ कर लो अरेस्ट. अरेस्ट होने के लिए आए सर. डरेंगे नहीं आपसे. We are not afraid of you.
3: दिल्ली में अभिजीत दीपके को पुलिस ने डिटेन किया है, प्लेन में किया है. मेरे साथ अभिजीत की माता है. आपको ये खबर कब पता चली और क्या आपकी पहली रिएक्शन थी?
4: अभी मुझे दयानेश्वर लोंडे ने कॉल किया था. मैंने बोले बोले मैडम अभिजीत को एक अटैक करा, मतलब मुझे नहीं मालूम था. बोले देखो ये नाइन पे आया है, इसलिए मुझे जब मालूम हो गया. और उन्हें मैं जाते टाइम ही बोला था टीवी और मोबाइल मत देख आज के दिन 10 तारीख के दिन. मतलब ठीक है, मगर माँ का दिल है नहीं रहता. एक रील देखी प्लेन में बैठा बम्बई से तो अच्छा लग गया. फिर इधर आने के बाद अभी एक प्लेन में उनको अटक कर दिया ना, अच्छा नहीं किया ना.
3: क्या आपकी भावना है, क्योंकि प्रोटेस्ट का पहले से ही बताया गया था फिर भी अरेस्ट किया गया?
4: नहीं, मुझे तो मालूम ही था एक ना एक दिन उसको अटक करने वाले, मुझे पता ही था अटक करने वाले.
3: लेकिन इस तरह से प्लेन में पहली बार किसी को अरेस्ट किया गया है, इसकी जरूरत थी सरकार को?
4: नहीं नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं थी. इतना उसने क्या करा था? आज राहुल गांधी 4-5 दिन से, फिर उसको अटक नहीं कर दिए ना उन्होंने. कितने दिन से वहाँ पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इतना कुछ करे ऐसे प्लेन में जाके अटक करने का, इतना क्या करा था उसने?
3: एक माँ का दिल है, क्योंकि आपको भी पता है, आप बहुत दिनों से चिंता जता रही है कि अभिजीत के साथ बार बार ऐसा हो रहा है, तो अब ये अरेस्ट किया है, क्या आपका मतलब जब पता चला कि पुलिस ने अरेस्ट किया, क्या भावना है?
4: अभी भावना क्या है, बुरा लग रहा है ना अटक करा है
3: तो. ये हमारे साथ अभिजीत दीपके के पिताजी है. क्या कहेंगे, आपको ये कब पता चला और क्या रिएक्शन थी?
5: मुझे अभी अभी पता चला, तुम लोग जब बाहर आए थे तो मुझे पता चला कि कुछ भी अरेस्ट हुआ है. फिर मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था तो प्लेन में उसको अरेस्ट किया, मुझे पता चला.
3: क्या रिएक्शन थी, क्योंकि ऐसे प्लेन में अरेस्ट किया गया?
5: नहीं नहीं, वो प्लेन में एक भारत के इतिहास में पहली घटना है कि एक स्टूडेंट को प्लेन में अरेस्ट कर दिया. ना रेपिस्ट को अरेस्ट कर सकते हैं, ना टेररिस्ट को अरेस्ट कर सकते हैं, ना जो जो भारत का जो पैसा है वो प्रदेश में लेके जाते भागते उनको अरेस्ट कर नहीं कर सकते. ये उनके दोस्त ही है, जो उनको सज्जन दिखता है वो उनको अरेस्ट करते हैं.
3: आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी अभिजीत से?
5: 7-8 दिन पहले जब यहाँ पे था वो, उसी टाइम पे डिनर करते समय बात हुई थी.
3: आपको पहले से चिंता थी पुलिस अरेस्ट कर सकती है?
5: नहीं, मुझे पता था कि वो पुलिस कभी ना कभी तो भी अरेस्ट करने वाले.
3: अभी आपका अगला कदम क्या रहेगा? आप दिल्ली जाएंगे मिलने के लिए या अभी तो अनशन होगा, पता नहीं?
5: नहीं, देखते हो जैसा सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड है, दिल्ली जाना है या नहीं जाना है.
6: I am just taking on record that I was being detained. There are 10 police officers who have come. I was eating puri bhaji at the place. Ye hain sare officers. Ye sare cops hain. 10

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित अनसुलझी बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
3: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित अनसुलझी, बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
3: यू नो डिजाइंस कितने हैं, लाख से भी ज्यादा डोर,
4: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
5: एक परिवार अटूट भरोसा।

0: This political eruption that's taken place in Tamil Nadu. Remember that Vijay and Rahul Gandhi will be meeting later today. Rahul Gandhi has a scheduled Chhatro Ki Goonj in Chennai. You know, many people will wonder whether this was scheduled deliberately so that Rahul Gandhi and the Congress could be out of Delhi, so there was no overlap with the CJP, which many believe the Congress is actually competing with. But there are many different contradictions and hypocrisies at play. Congress condemning the detentions taking place in Delhi, but a Congress government detaining anti-SIR protesters in Chennai. Well, that is how politics rolls. Well, a protest planned, this is the big story of the day, of course. A protest planned in the national capital has triggered a huge face-off now, with the CJP alleging a massive citywide crackdown on its Delhi Chalo March. And these allegations are true because we can see it happen. Three CJP leaders, the senior most founder, Abhijit Dibke, along with his partners Saurav Das and Ashutosh Ranka, were detained just after landing in Delhi from Mumbai this morning. They were reportedly taken to separate locations in Delhi, Gurugram and Dwarka. Dibke alleges the authorities accuses them of using dictatorial tactics and saying that the Delhi police boarded his flight to detain him and other party leaders, and has accused the government of stifling what was meant to be a peaceful protest, while CJP spokesperson Saurav Das has alleged that the state is at war with its citizens. BJP MP Sambit Patra is holding a press conference. Let's listen.
1: Jantar Mantar mein jo ho raha hai, TV mein jo dikh raha hai, और कुछ सोशल मीडिया के हैंडल में जंतर मंतर को दिखाया जा रहा है, वो भारत की कहानी नहीं है। भारत शांत है, भारत सुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है, मगर दिल्ली के एक कोने में कुछ अराजक तत्व जिस प्रकार से अराजकता कर रहे हैं, वह कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, मगर आज मैं आपको कह सकता हूं कि आज द एनार्किस्ट्स हैव फेल्ड। जो अराजक तत्वों का फ्लॉप शो हम देख रहे हैं, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। प्रयास था, ये कोशिश थी कि भारत को बंधक बनाया जाए, राजधानी को बंधक बनाया जाए, कोशिश थी कि यहां आगजनी हो, कोशिश थी कि यहां मार पिटाई हो, कोशिश थी कि यहां पर सड़कों पर लड़ाई हो, मगर आज भीड़ तंत्र पर लोकतंत्र की जीत हुई है। जिस प्रकार लोकतंत्र ने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया है और जिस प्रकार से सारा विषय कंट्रोल में है, एक बात मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि दी अनार्किस्ट्स हैव फेल्ड और उनका ये फ्लॉप शो नहीं चलने वाला है। कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, ये केवल आज की घटना नहीं है, कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बंद बुलाया था, कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट था, आज कुछ दूसरे तत्वों ने प्रोटेस्ट किया है, फिर 12 तारीख को एक प्रोटेस्ट बुलाया गया है। तो एक कालखंड में किस प्रकार से भारत में स्थितियों को बिगाड़ा जाए, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, मगर उसके पीछे के नियत को भी समझिए। देयर इज एनार्की विद इन द एनार्किस्ट्स ऑल्सो। अराजक तत्वों के अंदर भी अराजकता है। किसको ये क्रेडिट मिले? तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में गुत्थम गुत्थी चल रही है। आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का ठेका क्या कांग्रेस पार्टी ने ले रखा है? ठेका तो हमने भी ले रखा है, तो हमारा डेट अलग होगा। तो कांग्रेस बोल रही है, अच्छा, जेब में कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति, तथा कथित प्रति, अब उसके अंदर क्या है हमने नहीं देखा है, तथा कथित प्रति हम लेके घूमेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का दावा ये आम आदमी पार्टी करेगी? ये नहीं चलेगा, हमारा एक अलग दिन होगा। तो इस प्रकार एनार्किज्म विद इन द एनार्किस्ट यह भी चल रहा है। कल आप देखिए, राष्ट्रपति भवन गए थे कुछ राजनेता, राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलने के पश्चात राहुल गांधी जी का बयान एक नालायक नेता के बयान के समान है। मैं बहुत सोच समझ के ये शब्द, मुझे भी कुंठा हो रही है बोलते हुए, तकलीफ हो रही है। आई एम सिटिंग ऑन अ वेरी हाई पेडेस्टल, ही इज द एलओपी ऑफ द कंट्री, मगर जब मैं कहता हूं एक नालायक नेता, इसलिए कहता हूं कि चलिए आपने प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया, झूठ बोला, वो पूरा देश देख रहा है। आपने जिस प्रकार से भारत के संवैधानिक पदों के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, पूरा भारत सुन रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को सड़क की लड़ाई में घसीटने का प्रयास किया गया, मगर एक नालायक नेता ने राष्ट्रपति महोदया को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश की है। द एनार्किस्ट राहुल गांधी ट्राइड टू पुल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द एनार्किज्म व्हिच ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कंडक्ट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया, ये कहते हुए कि हम कल कुछ वोट चोरी के विषय को लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गए थे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी मान गई कि हम जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। अब देखिए, बेसिक प्रोटोकॉल भी राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है कि आप कोई मेमोरेंडम लेके जाते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स द मेमोरेंडम, ये बेसिक प्रोटोकॉल है भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का, इसीलिए तो भारत का लोकतंत्र विराट है। मगर आपने कहा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसी सांस में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कुछ एविडेंस है तो वो भी दीजिए। क्यों एविडेंस क्यों नहीं लेके गए थे? एविडेंस होगा तभी तो लेके जाएंगे। जब इलेक्शन कमीशन आपको बुलाती है कि हैकाथॉन के लिए आइए, आइए आप हैकाथॉन करिए हमारे साथ और आप ईवीएम को टेंपर कर दीजिए, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम ईवीएम में सुधार लाएंगे, तो नदारत गायब। जब प्रेसिडेंट मैडम कहती है कि एविडेंस है तो दिखा दीजिए, बाद में एविडेंस देंगे, अगर बाद में एविडेंस देंगे तो आप गए क्यों थे? तो आप प्रेसिडेंट के पास गए क्यों थे बिना एविडेंस के? मतलब इतने दिनों से, मैं तो कहूंगा लगभग एक साल हो गया वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी करते हुए, उसका एविडेंस आपके जेब में रहना चाहिए था, क्यों नहीं था आपके जेब में? क्यों गए थे राष्ट्रपति भवन बिना एविडेंस लेके? और बाहर आके नालायक नेता कहता है कि राष्ट्रपति महोदया मान गई कि हम जो कह रहे हैं। आप सोचिए, यह व्यक्ति लायक है क्या देश के प्रधानमंत्री या एक उच्च पद में बैठने के? ही हिमसेल्फ प्रूव दैट ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल इनफ टू ऑक्यूपाई ए हाई पोजिशन इन इंडिया। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक बहुत बड़ा और गंभीर, एक बहुत सशक्त विषय रखा था, और वो विषय था तीन राज्यों में जो बाई इलेक्शन उपचुनाव हुए उसके नतीजे। असम में उपचुनाव हुआ, नौगांव में हम लोकसभा का चुनाव जीते हैं, कांग्रेस को कितने वोट आए हैं वो तो कल बताया गया, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया। वेस्ट बंगाल में दो असेंबली के चुनाव हुए, लोकसभा का हुआ, असम में असेंबली के चुनाव वेस्ट बंगाल में हुए। नंदीग्राम हो या रेजी नगर हो, दोनों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, और पुडुचेरी में एनडीए की जीत हुई। चार सीट के नतीजे कल आए, चारों सीट पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत हुई। इनके जो वकील गए थे कांग्रेस पार्टी के, और ये तथाकथित एनार्किस्ट के जो वकील कल सुप्रीम कोर्ट गए थे कि हमें फैसिलिटी चाहिए मी लॉर्ड, टॉयलेट की फैसिलिटी चाहिए, वहां पर डॉक्टर की फैसिलिटी चाहिए जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको सारे फैसिलिटी प्रोटेस्ट साइट पे चाहिए, प्रोटेस्ट साइट पे आपको डॉक्टर भी चाहिए, आपको टॉयलेट भी चाहिए। आपके कहने पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी कर ली, मगर जब ये चारों नतीजे निकल कर आ रहे थे उस समय टॉयलेट मांगने के बदले आपको कहना चाहिए था मी लॉर्ड हमारे वोट चोरी हो गए हैं हमें बचाइए, क्यों नहीं कहा? अरे टॉयलेट मांगने गए थे, वोट चोरी का न्याय तो मांग लेते, आपके जेब में सबूत थे तो वो सबूत दिखा देते कि लॉर्डशिप देखिए ये सबूत है वोट चोरी हो गई बंगाल में, वोट चोरी हो गए नगांव में, गौरव गोगोई हमारा इतना बड़ा नेता उसके साथ धोखा हो गया, आसाम में वोट चोरी हो गई और बीजेपी जीत गई, पुडुचेरी में वोट चोरी हो गई और एनडीए जीत गया, वहां जाके शौचालय मांगेंगे, और वह शौचालय भी हमारी सरकार देगी, क्योंकि आपकी सरकार तो शौचालय भी नहीं दे रही थी। और वोट चोरी के विषय में सुप्रीम कोर्ट के सामने आप नहीं बोल सकते क्योंकि तथ्य नहीं है। कल ये जो महानुभाव हैं अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और केजरीवाल, ये तीनों निकल कर आए थे, वो ट्वीट ट्वीट और एक्स में सब केला किया था इन्होंने। ये अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया कि रेजी नगर में जो असेंबली का काउंटिंग हो रहा है उसमें बूथ नंबर 109 में भारी गड़बड़ी हो गई है, वहां वोट चोरी हो गई। कैसे चोरी हो गई वोट? वहां कुल वोट जो है वो 772 है और बीजेपी को 772 में से 909 वोट मिल गया। रजिस्टर्ड वोटर्स 772, बीजेपी वोट्स रिपोर्टेडली सिक्योर्ड 909। तो ये कितना बड़ा घपला हो गया बूथ नंबर 109 रेजी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। अरविंद केजरीवाल जी बैठे हुए थे, बिल्कुल फोन पकड़कर अपने हाथ में फटाफट ट्वीट कर दिया, दिस इज एब्सोल्यूटली शॉकिंग, दिस इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ ईवीएम टेम्परिंग। वो शॉक्ड हो गए, शॉक्ड होकर गिर पड़े और उन्होंने कहा कि ये एकदम ईवीएम टेम्परिंग हो गया है, उसका प्रूफ आ गया है हमारे पास। अरे भाई साहब, आप इतने शॉक हो गए, गिर पड़े, ईवीएम टेम्परिंग हो गई, तो टॉयलेट क्यों मांग रहे थे सुप्रीम कोर्ट में? ये वाला क्या हुआ, ये वाला क्या हो गया? चले जाते इसको लेकर। आधे घंटे के बाद जिस चैनल ने ये चलाया था उस चैनल ने लिखा, अरे हमसे गलती हो गई, वहां पर रजिस्टर्ड वोट जो है वो 772 नहीं है, वो 1110 है, लगभग 1110 है, 1101 है। उसके बाद वहां के सीईओ चीफ इलेक्शन ऑफिसर, उन्होंने भी ट्वीट किया कि 1109 वोट है और ये फेक था, ये सब फेक था। और ये सीईओ की ट्वीट देखी, वो भी जानते हैं कि ये फेक है, अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, अभिषेक बनर्जी भी जानते हैं, ममता बनर्जी भी जानती है कि ये सब फेक था। मगर फेक न्यूज के आधार पर किस प्रकार से यहां एनार्की फैलाया जाए उसका पूरा षड्यंत्र ये केजरीवाल जी और उनकी कंपनी रच रही थी। अब आज एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं केजरीवाल जी से याद आ गया मेरे को, वो सुन तो रहे होंगे शौक धोके, केजरीवाल जी आप इतना शौक हो गए थे कल रेजी नगर में और एकदम कंक्लूसिव प्रूफ था ईवीएम टेम्परिंग का, तो अक्टूबर 8, 2026, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, अक्टूबर 8, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस जयमाला बागची एंड वी मोहना ने आपके 50 वार्ड, म्युनिसिपल वार्ड पंजाब में जो चुनाव हुए थे उसके 50 म्युनिसिपल वार्ड के इलेक्शन को सेट असाइड कर दिया और कहा कि यहां पर मार्च से पहले फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। ये चोरी है या फेक न्यूज चोरी है? ये चोर मचाए शोर, जो सबसे ज्यादा चोरी किया हुआ है, जिन लोगों ने सबसे अधिक लोकतंत्र को और इलेक्टोरल प्रोसेस को खतरा पहुंचाया है, डैमेज किया है, वो लोग यहां चोर चोर चिल्ला रहे हैं। मैं तो वो रेणुका चौधरी जी का एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं वो एक ऑटोमेटिक डोर के सामने खड़ी थी और आप लोग थे उनके सामने, तो ऑटोमेटिक वो कुछ बोल रही थी कि चोर वोट चोरी हो गई, तो वो ऑटोमेटिक डोर अपने आप कुछ 10 सेकंड में बंद होता है, वो डोर बंद हो रहा था, रेणुका चौधरी धक्का दे रही, कौन बंद कर रहा है इस दरवाजे को, कौन कौन है ये? तो नीचे किसी ने कमेंट किया था, ये मोदी जी डोर को बंद कर रहे हैं, मोदी जी डोर चोर भी हैं। अगर मोदी जी गलती से कल को बोल दे कि सांस लेना बहुत जरूरी है जीवन के लिए, सभी सांस लें, तो मुझे तो शक है कहीं ये अपना नाक ना बंद कर ले, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि सांस लेना जरूरी है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल छापा है, अन्य अखबारों ने भी छापा है, नो कोरिलेशन बिटवीन SIR डिलीशंस एंड असेंबली पोल रिजल्ट्स बंगाल सीईओ। ये पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं, एक 20 सेकंड के अंदर, डीकोडर, एक डीकोडर नामक इन्फ्लुएंसर है। कौन बैठे हुए हैं आप मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बहुत लोगों ने बहुत हंगामा काटा है। डीकोडर ने क्या कहा? डीकोडर ने कहा ये एसआईआर में बड़ी गलतियां हो गई है, बड़े धांधली हो गए हैं बंगाल के अंदर, इसमें जो वोट काटे गए मुसलमानों के अधिकांश वोट कट गए। और उन्होंने कहा कि ये जो वोट काटे गए, जो 5 टॉप मोस्ट असेंबली सीट थी जिनमें वोट काटे गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई और भारतीय जनता पार्टी आगे रही, फायदा हो गया। उन्होंने कहा, डिकोडर ने कहा कि 62% जो वोट काटे गए वो महिला की थी, महिलाओं की थी। तो ये पूरी खबर बन के छप गई, हर जगह सोशल मीडिया में चलने लगा, लोग प्रश्न खड़ा करने लगे कि आखिर ये ऐसे कैसे हुआ, ये मुसलमानों के वोट क्यों काटे जा रहे हैं, 62% महिलाओं की वोट कैसे कट गए, और 5 टॉप सीट्स जिसमें सबसे अधिक वोट कटे बीजेपी को फायदा हो गया। अब सीईओ बंगाल ने ट्वीट किया, सीईओ बंगाल ने ट्वीट करके कहा कि नो, मतलब मैं पूरे डिटेल में नहीं जा रहा हूं, कम समय है, पहले तो उन्होंने 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी के विषय में कहा, द इलेक्टोरल डाटा फॉर द वेस्ट बंगाल डज नॉट सपोर्ट द पॉलिटिकल नरेटिव ऑफ डीकोडर, द 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद द हाइएस्ट डिलीशंस, शमशेरगंज, चौरंगी, मेटियाबुर्ज, कोलकाता पोर्ट वेयर वन बाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एंड जोरासंखो बाई बीजेपी, 4 तृणमूल कांग्रेस जीती है और 1 बीजेपी जीती है, द 5 विद द फ्यूएस्ट डिलीशन, जिनमें सबसे कम डिलीशन हुआ, महिषा दल, भगाबन पाऊ, इंदस, कातुलपुर और पातुषपुर, दे वेर ऑल वन बाई बीजेपी, जिसमें सबसे कम डिलीशन हुआ वो 5 बीजेपी जीती है। और महिलाओं का 50% वोट कटा है, 62% वोट नहीं कटा है। और देर इज नो डाटा बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी, जो अधिकांश वोट मुसलमानों के कटे थे, कोई डाटा नहीं है, ये डाटा गलत है कि 62% महिलाओं के वोट कटे और अधिकांश मुसलमानों के वोट कटे, तो यह भी सब कुछ गलत था। अभी कल, आज शनिवार है, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का दिखा रहा हूं मैं ही आपको, कल का है, आज के अखबारों में छपा है। YRCP कांग्रेस आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट गई थी कि जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसको आप शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि SIR में कुछ गड़बड़ी लग रहा है। नथिंग रॉन्ग इन डिलीटिंग डेड, शिफ्टेड और डुप्लीकेट वोटर्स, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द बेंच सेड दैट दोज हु हैव मूव्ड अवे कुड नॉट बी अलाउड टू वोट इन द वार्ड्स, नेम्स ऑफ डुप्लीकेट एंड डिसीज्ड वोटर्स ऑल्सो नीडेड टू बी स्ट्रक ऑफ एंड SIR टुक केयर ऑफ दीज एनोमलीज।
0: Okay, so that's the BJP's big press conference on both Rahul Gandhi as well as the protests taking place in Delhi. Our coverage continues right here on NDTV. Quick break, back with more.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्थर मसाला।
5: After a smashing start, the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.
6: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
5: दुनिया एक नई दहलीज पर अनिश्चित अनसुलझी बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में NDTV के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। NDTV वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
7: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए पर बिना अपने रूट्स को भूले।
8: जिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
9: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
10: एक परिवार अटूट भरोसा।
5: द शार्पेस्ट ग्लोबल वॉइसेस डिकोड अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स। Dr. Swarnim Wagle, General David Petraeus, Swami Sarvapriyananda, Mike Walsh, Nicholas Butts, at the NDTV World Summit, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, only on NDTV.
11: Welcome to the second edition of the NDTV World India-Japan Summit.
12: Deep localization. What does it essentially mean for Maruti Suzuki?
13: To be competitive and to be agile for development and the resilience to any disruption. So that's how we set this deep localization as our next challenge.
14: How do you see the India-US relationship prosper?
15: I think what was an important basis. When people talk about God, they forget that it was an economic bonding. If you take a look at what happened around the COVID, the combination of these four countries and the way it went about, it was not a defense relationship.
14: Abe spoke about India and Japan having not only the ability but also the responsibility to shape the region.
16: Both nations, India and Japan, must work harder still to carry the torch of some of the basic fundamental values to shape the world to come.
14: How would you see India and Japan in particular want to see Quad evolve over the next decade?
17: Quad could be a catalyst rather than just a forbinger. Quad could be a facilitator of growth, security and development in the region. Then Quad will have more meaning to itself.
18: Joint declaration on economic security.

0: शहर को सुंदर रखने की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है।
1: 1000 रुपए का तो पॉपकॉर्न है, कौन खाएगा?
2: तो पहले आप खाओ ना।
3: आप में से कितने लोग अपना डेटा शेयर करने के लिए रेडी हो गए?
4: अगर आप खुद स्ट्रांग नहीं है, आई थिंक नोबडी कैन हेल्प यू।
5: जरूरी नहीं है कि सबको 100 करोड़ 1000 करोड़ बनाना है।
6: Good morning, Mumbai, and a very warm welcome to ITW Universe presents NDTV UR 2026 Young Voices, Bold Dialogues. Before we begin, can we have a huge round of applause from all of you so that we start with a lot of energy? Lovely. Today is all about young voices, voices that question, create, challenge, experiment, and sometimes simply refuse to accept. Aisa hi hota hai. My name is Arun Singh, and I have my co-host Ranjana as well.
7: हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बिल्कुल सही अरुण आपने कहा। देखिए, वो युवा है जो विचारों को मानता है पर विचारधाराओं की सीमाओं से बिल्कुल बंधता नहीं है। और आज कुछ ऐसे ही युवाओं के साथ इस मंच को अरुण हम साझा करने वाले हैं और बेहद ही खूबसूरत पैनल होगा जहां बात होगी एआई से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक की, स्पोर्ट्स से लेकर सिनेमा तक की और कॉमेडी से लेकर पॉलिटिक्स तक की।
8: BMC 570% tax लगाने वाले in theaters that will be played in Mumbai
9: itself. 70%
8: more. So what is your take on that, ma'am?
9: कौन देखेगा फिर फिल्म में? वैसे कोई नहीं देख रहा। कोई नहीं, सच्ची में अगर फिल्म देखने जाना हो आपकी 2-3 हजार तो easily, 1000 रुपए का तो पॉपकॉर्न है, कौन खाएगा? Going to a theater is such an expensive experience now and it's also very classist, I must say. क्योंकि वो जो single screen है ना वो खत्म हो गई है, so you've already alienated your audience. There are a lot of people who find going to a theater very intimidating. क्योंकि उनको लगता है कि वो वहाँ पे fit नहीं करते, तो आपने वैसे ही alienate कर दिया and this is like very sad. Exactly. It shouldn't be the case.
10: क्या social media censorship की आज ज़रूरत है?
9: बिल्कुल है, बट ये कैसे करेंगे हम? क्योंकि इतने सारे फेसलेस या तो बॉट्स होते या तो लोग हैं जो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, वो आपको क्वेश्चन करेंगे आपके लुक्स के ऊपर, 50 चीज़ों के ऊपर। जब ये वो लोग होते हैं जिनके बायो पे लिखा होता है लिव एंड लेट लिव, पर वो जब भी किसी और के बारे में बात करते बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से बात करते। सो आई जेन्युइनली फील इट इज़ टाइम टू टेक अकाउंटेबिलिटी। जब तक वो फियर ऑफ लॉ नहीं होगा ना, वो इंसान बदलेगा ही नहीं। और सिर्फ पब्लिक फिगर्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली लड़कियां जिनके अकाउंट्स ओपन होते हैं। कितने सारे लड़कों के मैसेजेस आते हैं जो मतलब ख़राब चीज़ें बोलते हैं। हम लोग तो वी आर स्टिल ओल्डर, वी नो हाउ टू टैकल इट, बट जो यंगर लोग हैं, यंगर जनरेशन है, वो गलत स्टेप ले भी लेते हैं।
5: ज़रूरी नहीं है कि सबको 100 करोड़ 1000 करोड़ बनाना है या फेमस होना है या जो भी। आई फील इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड आपको क्या चाहिए, नॉट कि किसी ने वो किया मुझे भी करना है, वैसा नहीं। आपको जेन्युइनली क्या अच्छा लगता है, आपका पैशन क्या है, व्हेन यू गो फॉर इट उसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी होता है और सक्सेस भी मिलता है। टुडे राइट, देर इज़ सो मच ज्ञान एवरीवेयर, सोशल मीडिया, चैट जीपीटी, देर इज़ सो मच इन्फॉर्मेशन दैट कन्फ्यूजिंग हो सकता है। करना सब कुछ है बट लैक ऑफ क्लैरिटी। सो आई फील स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग आपका पैशन क्या है इज़ द वे टू गो फॉर इट।
11: सबसे पहले तो मैं युवा को ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई चीज़ है जो परेशान कर रही है, इट्स वेरी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू स्पीक अबाउट दैट। बींग वोकल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट
12: एंड It's very important to not judge yourself because there will be people around you who will make you feel insecure. There are people around you who will try to put you down. Never doubt yourself. Believe in yourself. Never compare yourself with anyone because your individuality is your superpower.
13: Last year, लगभग 236 young girls की हमने जान बचाई जिन्होंने इंटरनेट में डिक्लेयर कर दिया था कि we are quitting. That's the kind of effect cybercrime is having on the impressionable minds of our youngsters. Cybercrime ab crime nahi raha, cybercrime ab cyber terrorism mein tabdeel ho chuka hai. AIIMS, JNPT, cyber security departments, IB, RAW sab cyber attack ke shikar ho chuke hain. Aur aapko bata dun, jab Pehelgaon ke aftermath mein Bharat ne operation sindoor chalaya tha, to Bharat par 10 lakh se zyada cyber attacks hue the और उनमें से 1% करीब सक्सेसफुल भी हुए।
2: अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो, जैसे पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो, तो पहले आप खाओ ना। आपके चिल्ड्रन जो है उनको खाने को लगाओ, लेट लेट बी हैबिट। अगर आप वो बोल रहे हो कि उसमें केसर है तो आप केसर खाना चाहोगे ना, तो खाने दो ना, आप आपके फैमिली में खाओ, देन बाकी लोगों को बोलो। वाई अदर वे अराउंड।
14: इसके अलावा ये बताइए, सबसे ज्यादा डर क्या है आपके हृदय में?
2: ज्यादा
14: भय, डर किस बात का है?
2: मुझे किस चीज का भी डर नहीं है। मुझे ये बहुत लोगों ने सवाल पूछा, मुझे समझ में डर किस चीज का है? नथिंग इन द वर्ल्ड यू शुड फियर ऑफ, ओनली वन थिंग यू शुड बी फियर्ड ऑफ इज डूइंग रॉन्ग थिंग, दैट्स इट।
14: यूथ ही जब ही कहता है कि हम क्या करें, सिस्टम ही ऐसा है।
2: आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, इसलिए यू आर पॉइंटिंग कि सिस्टम ऐसा ही है, क्या करें। यू आर पार्ट ऑफ सिस्टम, ट्राई टू इम्प्रूव वट एवर इज इन योर कैपेसिटी। जिस दिन हम ये करना चालू करेंगे, उस दिन हम सिस्टम को ब्लेम करना बंद कर देंगे, और जिस दिन ये ब्लेम करना बंद कर देंगे, उस दिन हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली सुधर गया होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू माय बिट।
15: किसी भी मेट्रो सिटी को अगर एफिशिएंट रहना है, अप टू मार्क रहना है, तो उसकी जो मोबिलिटी है वो सबसे अच्छी होनी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द टारगेट विच वी हैव केप्ट इन माइंड। सो अभी जो भी बचा हुआ काम है वो अगले दो तो तीन साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। okay. और उसमें हमारा जो ट्रांसपोर्ट एक्सपीरियंस है दैट इज गोइंग टू सब्सटेंशियली चेंज।
10: आज के युवा से कनेक्ट करते हुए कि कितना सिविक सेंस उनमें है, और मुंबई को क्लीन रखने के लिए, साफ रखने के लिए हमारी युवा क्या कर सकती है?
15: आई थिंक पहले तो सबको अपना सिटी ओन अप करना चाहिए। हम हमारे घर को तो गंदा नहीं रखते ना। अगर ये मेरा शहर है तो ये शहर को सुंदर रखने की जिम्मेदारी सिर्फ BMC की नहीं है,
10: बिल्कुल
15: ये हर एक की है। अगर हर एक ने ये डिसाइड किया तो हम लोग उसको सुंदर जरूर रख सकते।
13: युवा इतने होशियार है, आपके एक्टिविटीज से जिस तरीके के एखादा मुद्दा लेके आप लड़ते हो,

0: पे वो ध्यान रखते हैं। तो आप एक्टिंग मत करना, अगर आप एक्टिंग करोगे तो ये एक्टिंग डेफिनेटली जेन ज़ी और युवा पीढ़ी उसके पकड़ेगी। दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में बहुत सारे युवा आए थे, जेन ज़ी आए थे, और उनका आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि एक मंत्री को घर जाना पड़ा।
1: तो आवाज है, मंच है, सुना भी जा रहा है, लेकिन क्या मौका दिया जा रहा है?
2: बिल्कुल मौका दिया जा रहा है, जो युवा सोचता है उसको धरती पर किया जा रहा है।
3: अगर सुना जा रहा होता तो हमें रस्ते पर उतरने की नौबत नहीं आती। So I think the proof is in the pudding.
4: We are the people who are willing to question the old systems that we don't believe in. And वो हम घर से कभी कभार नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम रोड पे आ जाते हैं। तो फिर रोड पे आते तो लोगों का ध्यान आ जाता है कि बच्चे सड़क पर आ गए। सबसे पहले तो ये सवाल कि क्यों बच्चों को स्कूल के बदले, कॉलेजेस के बदले, इंस्टीट्यूशंस के बदले उन्हें क्यों सड़क पर आना पड़ा।
1: मैं डिजिटल मीडिया पर थोड़ा आना चाहती हूँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जंतर मंतर में जब आंदोलन हुआ उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल इस बात को लेकर निकला कि क्या इस बार चुनाव इंस्टाग्राम पर लड़ा जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तक को उस प्लेटफॉर्म पर आना पड़ रहा है।
5: 12 इयर्स अगो, 13 इयर्स अगो, उस समय भारत की छवि में देयर यूज्ड टू बी अ मैल नरिश्ड, भूख के साथ एक बच्चा जिसकी रिब्स दिख रहे हैं। आज वही 12 साल के बाद, आई एम नॉट सेइंग दैट,
3: आर यू टेलिंग मी दैट मोदी जी हैज मेड दैट मैल नरिश्ड बच्चा इनटू नॉन मैल नरिश्ड बच्चा?
5: आई एम अनीश भाई,
3: लाइक लेट्स हैव सम लिमिट्स।
5: अनीश भाई
3: जय जय मोदी, हर हर कीपर। इतना
2: फिर से अभी मेरे को ये समझ नहीं आता, हमें इस बात से भी क्यों दिक्कत है कि भारत की जो इमेज है वो दुनिया में अच्छी हुई, इसमें क्यों किसी को प्रॉब्लम होगी? वी हैड जस्ट 4 यूनिकॉर्न्स इन 2013, We have 250 unicorns today. ये है जो भारत की इमेज बनाता है। हमारे देश में 250 स्टार्टअप थे, DPIIT का डेटा है। आज 240,000 स्टार्टअप है देश में। ये है जो हमारे देश की इमेज बनाता है। टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के अंदर जो हमारा यूथ है वो एस्पिरेशनल है, वो स्टार्टअप्स बनाना चाह रहा है, वो जाकर के इनोवेशन करना चाह रहा है। ये है जो हमारी इमेज बनाता है। दुनिया को लग रहा है इंडिया इज ब्राइट स्पॉट। हम फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी थे 2013 में, हम फैंटास्टिक 5 की इकोनॉमी बन गए 2026 में।
6: Freedom is very important, but without guardrails is a free fall. Mm. So that's where I strongly believe universities do have to set some benchmarks, some standards, some lines that should not be crossed. There are thousands of videos on YouTube freely available, how to build your biceps, your resistance training, etc. We still pay a lot and go to gyms. Mm. You need a trainer. You need somebody to watch you, look at you, correct you in your momentum, in your pace, and make you understand what it needs. So universities will exist, a coach will exist, but you have a lot of technological benefits.
7: And coming from a business family, I've learned that if the product is good, and then the marketing, and then the advertising, and then the reviews of the consumer and the customer, I feel these four things are the most important if you want a successful business. And anything and everything that you do with the right intention will always go in the perfect direction. And be it movies or business, if your intention is correct, your message is always reaches the right audience.
8: Ek quick rapid fire main aapke saath karna chahungi. Koi aisi cheez jo ad dekhkar kabhi aap nahi khareedna chahenge?
7: Skin care.
8: एक ऐसा बिजनेस डिसीजन जो आप रीडू करना चाहें?
7: आई एम ऑन अ वेरी इनिशियल स्टेज टू थिंक अबाउट दैट, बट ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो मैं अभी करना चाहती हूँ रादर देन थिंकिंग अबाउट मैं अभी रीडू क्या करना चाहती हूँ।
8: एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको लगता है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा मिलना चाहिए?
7: You look so beautiful.
8: युवा को एक शब्द में आप कैसे, how do you, would you explain it?
7: I feel this generation is very ambitious and all of us are very hardworking and true to our dreams.
9: आज की जनरेशन हम लोग से काफ़ी इंटेलिजेंट है, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। इसमें एक चीज़ मेरा सजेशन है युवा को, सक्सेसफुल होने के लिए देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस इन लाइफ। आपको जो इनिशियल टाइम है उसमें काम के अलावा कोई अगर आप बैलेंस ढूंढोगे तो देयर कुड बी लकी फ्यू विच वुड स्टिल सक्सीड, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट। बट किसी भी ड्रीम को जब आप चेस करते हैं, जब आगे निकलते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं, और वही जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं और जिसको आप फाइट करते हैं और उसके बाद आप उससे उभर के निकलते हैं, वही एक इंसान को सक्सेस दिलाता है।
10: When we are at the dilemma stage, whether we need to choose safe career or your passion, so I can suggest if you are very passionate about doing something, so definitely you should try, otherwise you will have that regret with you not doing it. If someone believes you, you work hard and prove them they are right. If someone not believes in you, work double hard and prove them they are wrong. that should be your idea. And second is, see, the challenges will be there in entire journey. The success will not come in overnight. It is a continuous process.
11: One who knows their why can figure out any how. अगर आपको वजह पता है, purpose पता है कि आप जो करना चाह रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, so you will figure out कि कैसे करना है. I think it's very good time to be an entrepreneur in the country क्योंकि आपके पास पूरा ecosystem है, आपके पास resources है, आपके पास ChatGPT, Claude है, basic से आपको सिखा सकता है कि entrepreneurship क्या होती है, even if you do not have any background in it. आप coding से लेके एक manufacturing machine कैसे काम करती है, सब अपने level पे सीख सकते हैं. Financial backing के लिए आपके पास resources हैं, you just have to find it.
12: Lines of Kargil, the fury of Operation Sindhu,
13: so many attacks,
12: the chaos and cries of disaster zones, to fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
13: It's incredible.
12: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
13: Welcome to Left, Right, and Center.
12: Hard facts. Awesome.

0: मैं यूएस में 13 साल के लिए था एंड जब मैं यूएस में था, यूएस में इंडिया से भी ज्यादा पैकेज फूड खाते हैं लोग. तो मुझे लगा कि आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. व्हाई डोंट आई लीव द यूएस एंड आई रेज अवेयरनेस अबाउट दिस थिंग इन इंडिया. इंडिया में लोग एडुकेटेड हैं लेकिन हम हेल्थ लिटरेट नहीं है.
1: अच्छा, दुनिया की 4 बड़ी MNCs ने आपके खिलाफ लीगल नोटिस भेजा हुआ है.
0: सो आई हैव वन लाइन फॉर ऑल दीज ब्रांड्स. इफ यू सेंड मी अ लीगल नोटिस, आई विल गेट यू पब्लिकली नोटिस.
2: फनी रील या कॉन्ट्रोवर्शियल रील, एल्गोरिथम में क्या ज्यादा बिकता है?
3: इट्स वेरी इजी टू थिंक कि आज कोई ट्रेंड कर दिया तो वो चल जाएगा, बट देन यू ऑल्सो एज अ क्रिएटर हैव टू थिंक अबाउट कंसिस्टेंसी. क्योंकि अगर आपकी एक रील फटती है तो जरूरी नहीं है कि आपकी बाकी 10 और रील भी फटेंगे.
2: हेमा, क्या ये सच है कि गुरु रंधावा कमेंट करते हैं और हायर कर लेते हैं?
4: मेरे लिए बहुत अच्छा था ये मूवमेंट जब उनका मुझे मैसेज आया, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था तो लोग मेरे कलर को लेके बहुत बहुत बोला है लोगों ने, काली दिखती है, ब्लैक बेरी है, या कपड़े कैसे पहनती है, वॉक कैसे करती है, बहुत लोगों ने बोला है. बट जब गुरु सर ने मुझे सॉन्ग में लिया सो मुझे स्टैंडर्ड मिला, शी कैन डू समथिंग. एंड आज मैं यहाँ हूँ, थोड़ा मैं नर्वस हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है.
5: बट कैन वी टेल हर दैट शी इज डूइंग ग्रेट?
2: Thank you, wonderful.
6: I think everyone has different stories and we have a billion different stories. इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, फोन उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो. What you would have been able to do in 10 years, 15 years, 20 years in corporate, अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो आप वो 1 साल, 2 साल, 3 साल में भी कर सकते हो.
3: और आप 2 टैक्स स्लैब ऊपर तो चले जाओगे.
5: Ronak,
7: hi.
5: How are you?
7: I'm good. How are you, brother?
5: Good. Have you recovered from Rocky Sawant?
7: Yes, I'm trying. I'm still trying.
5: But a lot of people in the comments are saying that, you know, you were taken aback and you probably didn't expect that avatar of her coming.
7: I did expect all of it.
5: Okay.
7: I just didn't expect it to all be that much.
8: I think he was in awe of
7: her. I was in awe of her.
5: Really?
7: Yes, I was in awe of her. I was awestruck. Thank you. Yes.
9: Stand-up comedy is a very brutal profession. When it works, you feel a huge sense of achievement. And when it fails, it's so gut-wrenchingly horrific that most people stop doing comedy, which is the right thing to do for your mental health. So, and the few of us who still do it, I don't know why we do it, because the highs are very high.
8: As he said, it's quite unpredictable. Kabhi bhi kuch bhi ho sakta hai. You might be thinking, oh, this is my audience, and you might bomb really hard. But the next day, you just want to redeem yourself. So you keep on going on stage and back to back cheese hotel, and of course money, and that's why we hang out with
5: yes.
8: Warren.
10: Basically, I would say around the time I started working with a lot of the colleagues on stage in the industry generally, people were doing small bar gigs, small theater gigs, and it's really evolved into sort of being a cultural force overall. I don't want to get into the specifics of the numbers, but folks have gone from playing 200 seaters to a couple of thousand, some doing 5,000 seats. Brands interacting with us as if we're as legitimate an industry as any others. I think that's the best I can say without anybody's tax bracket becoming a problem.

0: समाज सेवा और समाज के लिए कुछ करना, मैं बोल सकती हूँ कि बचपन से मेरा एक उद्देश्य रहा। और आपका एक छोटा सा कोशिश किसी के ज़िंदगी में जब परिवर्तन लाता है, जब आप उसके चेहरे पे खुशी देखते हैं, तो वो जो आत्मसंतुष्टि, जो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है, वो सबसे प्रेशियस होता है। और इसी सोच के साथ मैंने मेघा श्रेय एनजीओ की स्थापना की और समाज सेवा से जुड़ी।
1: Worst part that I see with Gen Z today is the death of real intelligence. Since AI is something that people use every single day, तो वो अपना खुद का दिमाग use करना ही छोड़ देते हैं। मतलब ये this is a double edged sword, right? आप में से कितने लोग अपना data share करने के लिए ready हो गए?
2: Even in my company, I keep telling people that get better at these two things. A, you should have as much context that people would not want you to leave the room. And second, judgment. I think what Ishan also said, right? Ki aaj ke din mein real intelligence is more important. And what is extremely important is if you can be the judge of what is good and what is bad. So I would just say that develop these two skills, have like great judgment and have so much depth and context ki koi aapko bol hi nahi sakta ki main aapke bina ye kar sakti hu.
3: Jaise aap jante hain, Nimaya Foundation hazaron mahilaon ko AI sikhata hai. To Haryana mein ek college hai jahan pe humne ek ladki se pucha ki aapne kya kiya ye course ke baad. तो उसने कहा कि मैंने एक दादी दादा बॉट बनाया। मैंने कहा वो क्या होता है? तो उसने कहा कि मैंने ये देखा कि मेरे गांव या कम्युनिटी में ग्रैंड पेरेंट्स बहुत कम हैं, तो मैंने ना चैट जीपीटी या जो भी उसने प्लेटफॉर्म को ट्रेन किया ताकि वो अपने युवाओं के साथ दादी दादा की तरह बात करे, उनको कहानी सुनाए। तो वहाँ से मुझे एक थॉट आया कि जिन लोगों के पास डिग्री नहीं है, जिन लोगों के पास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, उन लोगों के लिए AI तो एक पेंट ब्रश है और प्रॉम्प्टिंग समझ लो रंग है और कैनवस एम्प्टी है। तो विथ ह्यूमन जजमेंट, ह्यूमन क्रिएटिविटी, बट दिस पावर कि अब AI के द्वारा आप वो क्रिएट कर सकते हैं जो पहले आप सिर्फ सोच सकते थे, वो पावर है।
4: मेरा बच्चा है 9 साल का है, उसे फास्ट बॉलर बनना था, मैंने उसे खुद ने मना किया है। मुंह से लेके टो तक इंजरीज है मुझे, बहुत ज़्यादा। मुझे 15 stitches आए मुंह पे बॉल लगने पे। मेरा स्कैपुला डैमेज हुआ है बॉलिंग करते करते, मेरा शोल्डर डैमेज हुआ है बॉलिंग करते करते, मेरा C6 C7 में आर्थराइटिस है, मेरा L3 L4 L5 5 fractures बॉलिंग के एक्शन की वजह से था, वो कभी हील नहीं हुआ। मेरा डिस्क प्रोलैप्स हुआ है बॉलिंग की वजह से, मेरा साइड स्ट्रेन कई बार स्ट्रेन हुआ है Grade 1 Grade 2 लेवल पे, मेरा डिस्क पूरी तरह से डैमेज है, मुझे बार बार आर्चेस वाली एक्सरसाइज अभी तक करनी पड़ती है। लेफ्ट नी में आर्थराइटिस है, राइट नी पटेला डैमेज है, लेफ्ट नी कार्टिलेज डैमेज है, राइट नी मेनिस्कस डैमेज है, मेरा टो फ्रैक्चर हुआ है। सो इस पूरे रूम में सिर्फ 3 लोगों ने हाथ उठाया फास्ट बॉलिंग के लिए, मैं समझ सकता हूँ।
5: आपका क्या एडवाइस होगा ये जो यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ देयर करियर्स?
6: द ओनली पीपल हु आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर टफ टाइम इज योर पेरेंट्स एंड योरसेल्फ। अगर आप खुद स्ट्रांग नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, आई थिंक नोबडी कैन हेल्प यू।
5: यहाँ पे बहुत युवा ऑडियंस हैं, इनको आप बताएंगे कि वुशु है क्या?
7: वुशु एक चाइनीज मार्शल आर्ट है, जेडी जैकी चान मतलब सभी कुंग-फू में जाना जाता है उसको, जैसे हम लोगों ने फिल्मों में देखता था, और कंटेक्ट स्पोर्ट्स मतलब फाइट भी है, दोनों ऐसे जुड़ा जाके वुशु कहते हैं।
5: और आपके पास बहुत कम दिन थे प्रेपरेशन के लिए।
7: लास्ट ओवर में मेरा नाम आ गया तो हमको थोड़ा खुशी मिला कि इंडिया टीम में मैं शामिल हो पाया, पर भी कल टीम जाने वाला है और आज मुझे मेरा फिटनेस टेस्ट और फिटनेस का एग्जामिनिंग किया, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर था, पर भी एक हमको मौका मिला है तो नहीं छोड़ना है और मैदान में दिखाना है।
5: और रोशबीना, वहाँ पहुँचने के बाद आप एक और सिल्वर मेडल जीतती हैं।
8: Golf is one of those sports which is such a mix of the mentality as well as the physicality. It is very tiring in that sense because you need to be 100% focused at all times. You need to be like thinking about so many external factors as well, along with obviously the technique which is very complicated, and all of that just adds up to make it pretty taxing, I would think.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: दुनिया एक नई दहलीज पर अनिश्चित अनसुलझी बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।
6: After a smashing start, the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.

0: United Arab Emirates, as our reporters are telling us, then there may be really a reason to believe that it won't just be a kind of fishing expedition, but rather that there might be access to further information. We don't know what that is yet. You know, could it be information about the aircraft? Is it access to the hijacker? Is it more information that only the Dubai state security agencies can share in person? All of that is pretty much conjecture at this point of time. But this is a huge step that India has taken. The NIA is the premier counter-terror investigative body in the country, and there had been some murmurs about how India cannot really afford to be on the sidelines of this investigation, given that Captain Smith, the lead pilot, is an Indian national and Indian citizen. And therefore, India can't simply monitor the situation from the sidelines or from the outside. So this is the only way to get into it. Whether it means joining the probe or not, like you said, Anusha, we'll have to see how that unfolds.
1: Absolutely. Thank you, Shiv, for putting all of that into perspective. We'll, of course, await more clarity and details about what this investigation will entail. Cutting across live to the press conference of BJP leader Ravi Shankar Prasad. Let's listen in.
2: लेकिन प्रॉक्सी शब्द थोड़ा शालीन लगता है मुझे. शैडो बॉक्सिंग. सीजेपी आम आदमी पार्टी की शैडो बॉक्सिंग करती है. और आपने देखा होगा, सुबह से उनका नाटक चल रहा था और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, फिर वो आ गई और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए. ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है और सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर रहे हैं. लेकिन हमें गर्व है हिंदुस्तान की जनता पर कि उन्होंने उनके इस षड्यंत्र को निरस्त किया है, असफल किया है. लोकतंत्र की शालीनता, जनता का आशीर्वाद, अराजकता पर विजय हुआ है. और इस बात को मैं पूरी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं. द डिग्निटी ऑफ डेमोक्रेसी has destroyed the chronic anarchy which the opposition is trying to foment. क्या चाहते हैं आप? आज कुछ हम बड़े सवाल उठाना चाहते हैं यहां पर. ये चाहते क्या है? और थोड़ा इसका बैकग्राउंड देना जरूरी है आज की परिस्थिति को समझने के लिए. याद करिए, जब मोदी जी 15 में आए थे, जीते थे 14 में, तो 15 से ईवीएम की कहानी शुरू की गई. उस समय देश का कानून मंत्री था, बहुत बहस संसद में हुई. हमने बताया कि जब आप जीते तो ईवीएम ठीक, चाहे मायावती या अखिलेश, और जब मोदी जीते तो ईवीएम खराब. फिर जब 19 में मोदी जी जीत गए, फिर 24 में जीत गए, तो फिर एसआईआर की कहानी शुरू की गई. मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं, लगभग 9 से अधिक बार देश में एसआईआर हुआ है. और यह कानून में प्रावधान है. मैं आज देश के सामने आप लोगों के माध्यम से एक सवाल कहना चाहता हूं. जो मर गए वो वोटर नहीं रह सकते, उन्हें रहना चाहिए क्या? जो अपने क्षेत्र में लोकसभा या विधानसभा में निवास नहीं करते वोटर नहीं बन सकते, और एक जगह से अधिक का वोटर नहीं बन सकते. मैं पटना साहिब का एमपी हूं, लगभग 40,000 मेरे यहां भी लोग कटे हैं, मुझे तो कोई शिकायत नहीं है. लेकिन आज देश के सामने यह संख्या जानी जरूरी है कि अभी तक 2,89,00,000 वोटर्स वे फाउंडेड, 2.89 करोड़, 6.3 करोड़ शिफ्टेड, 1 करोड़ डुप्लीकेट और 3 करोड़ एब्सेंट.

तो यह संख्या लगभग 13 करोड़ की आती है। आपको इस पर कहने का अधिकार है कि कोई गलत है तो उसका नाम ऐड हो सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल और मैं उठाना चाहता हूं, जो घुसपैठिए हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है, क्या उनको वोटर बनना चाहिए? तो ये लड़ाई किस बात की कर रहे हैं, ये चाहते क्या है? ये बात बार बार पार्टी की ओर से कही गई है कि संवैधानिक संस्थाओं का राहुल गांधी सम्मान नहीं करते, और अब तो यह हाल है कि उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने को भी झूठ बयानी का आधार बना लिया है। कि समानता देश में यह नहीं होता कि आज राष्ट्रपति के सोर्सेस से भी कहा गया कि उनके बारे में जो बात कही गई है एलओपी के द्वारा वो गलत है। तो राहुल गांधी जी, अब राष्ट्रपति के सोर्सेस से भी आपकी झूठ बयानी पकड़ ली गई है। राष्ट्रपति जी ये तो नहीं कहेंगे ना, वो तो एक्सेप्ट नहीं देंगे, लेकिन अब तो कमेंट आ गया। मित्रों, आज मैं किसी चुनाव आयुक्त का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बैकग्राउंड देना जरूरी है। मेरे पास पूरी सूची है कि कितने लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन्होंने राज्यपाल बनाया, और एक साहब तो कमाल के थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हटे, राज्यसभा के एमपी बने और मंत्री बने, और उस समय में पार्टी का मुख्य, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा आज, आई डोंट वॉन्ट टू ग्लोरीफाई दम, लेकिन उस समय पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था, यहीं से पूछा था कि आप जवाब दीजिए, तो उनसे पूछा गया था, इसको मैं उचित समय पर जवाब दूंगा, और उचित समय कभी आया ही नहीं, उनकी राज्यसभा भी खत्म हो गई और मंत्री पद भी खत्म हो गया। एक श्रीमान जी का नाम मैं जरूर लूंगा, नवीन चावला का। यहां मेरे कुछ पुराने मित्र बैठे हुए हैं, अखिलेश जी को मैं देख रहा हूं, उनकी कोशिश थी कि भाजपा को बैन कर दिया जाए, और स्वर्गीय अरुण जेटली, हम लोग गए थे इलेक्शन कमीशन में, उनके खिलाफ बायस की शिकायत की थी, और उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर गोपाल रामास्वामी ने लिखा था कि इनको हटाया जाए, और हटाने की बात तो दूर, मनमोहन सिंह की सरकार ने उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया था। और ये कौन थे नवीन चावला? इमरजेंसी में जो डिटेनी थे उनको तंग किया जाए, गर्मी में परेशान किया जाए, ऐसे लोग थे, और ये हमें नसीहत दे रहे हैं। राहुल गांधी, कृपया करके ये बदतमीजी बंद करिए कि इमरजेंसी आ गई है। इमरजेंसी की आपकी पूरी कहानी, आपकी दादी की कहानी ये देश जानता है, किस प्रकार से आप, ये दादी जी जब उनका इलेक्शन सेटिसाइड हो गया था तो उनकी कुर्सी को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला था, जजेस सुपरसीड किए गए, सेंसर लगाया गया, पूरा बहादुर शाह जफर मार्ग में सारे दफ्तर थे अखबारों के, उसकी बिजली काट दी गई, पॉलिटिकल पार्टी बैन की गई, जेपी को गिरफ्तार किया गया, संघ के स्वयंसेवकों की नाखून नोचे गए। राहुल गांधी, यह लगता है आप नहीं जानते हैं या आप जानना नहीं चाहते हैं, तो कृपया करके आप इमरजेंसी की बात तो हमें न कहें। और आज जेपी का 2 दिन पहले जन्म दिवस था, मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनकी किडनी खराब हो गई थी इन लोगों के द्वारा, और वो जसलोक अस्पताल में थे, डॉक्टर ने कहा इनको धूप की जरूरत है, वरांडे में बैठने दिया जाए, और नहीं 26वें फ्लोर जनता देखेगी तो हंगामा हो जाएगा। बाद में स्वर्गीय सोली सोराबजी वगैरह जब कोर्ट जाने की बात की तब उनको 1 घंटे धूप में बैठने दिया गया। यह है राहुल गांधी, आपकी पार्टी का इतिहास, और हमें कहते हैं इमरजेंसी की बात, और ये सारे वामपंथी जो हैं इमरजेंसी के समर्थक थे। इसलिए प्लीज डोंट गिव लेक्चर टू अस ऑन इमरजेंसी, वी हैव फॉट अगेंस्ट द इमरजेंसी। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी आज भी सरदार के वेश में, जो देश में उन्होंने जबरदस्त

0: अस्त प्रतिवाद और प्रतिकार पैदा किया था, ऑलमोस्ट लाइक लेजेंड, हम जानते हैं। मित्रों, एक और बात जो मुझे कहनी है कि आप चाहते क्या है। आज ये सवाल, चूंकि आज एक प्रकार से लोकतंत्र की विजय का दिन है, और जो बार बार कहा जा रहा है संविधान संविधान, हमें राइट टू प्रोटेस्ट है, तो संविधान की धारा 19 के क्लॉज 2 में इस बात का प्रावधान है कि अगर आप देश की सुरक्षा हार्मोनी इत्यादि का विरोध करते हैं तो आपकी वो अधिकार को नियंत्रित सीमित किया जा सकता है। तो पूरी दिल्ली को आके आप घेर लेंगे, लोग चल नहीं सकते, आ नहीं सकते, कुछ हजार लोग हैं, और अगर पुलिस ने कार्रवाई की सुरक्षा के नाम पर, सहूलियत के नाम पर, तो आप कहते हैं वी हैव गॉट द राइट टू प्रोटेस्ट। मुझे लगा कि ये जो उनके बार बार दावे किए जा रहे हैं उसको थोड़ा आपके सामने रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार, ये लोग आजकल तो एक और नई बात मुझे दिखाई पड़ती है, एट अ ड्रॉप ऑफ ए हैट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। एसआईआर को चैलेंज करने में वामपंथी भी थे, कांग्रेस पार्टी भी थी, टीएमसी भी थी, सब चले गए थे, और कुछ तो झोला छाप रहते ही हैं, वो चले ही जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सुना, और बार बार सुनने के बाद क्या कहा कि एसआईआर चलेगा, और ममता जी ने बहुत शिकायत की तो पूरे बंगाल के चुनाव को उन्होंने जुडिशियल ऑफिसर्स को दे दिया, याद होगा आपको, ताकि कोई शिकायत तो नहीं होगी। उन जुडिशियल ऑफिसर साथ क्या बदतमीजी बदसलूकी की, आप जानते हैं कि लेडी जुडिशियल ऑफिसर रो रही थी, इतना हंगामा किया था। तो आप कोर्ट नहीं मानते, आप वोट नहीं मानते, आप डेमोक्रेसी नहीं मानते, आप कहीं ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो क्या है? निष्कर्ष साफ है, ये ट्रस्ट एक ही बात में करते हैं, फॉरेन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस को। एक नैरेटिव बनाओ कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, और ये नैरेटिव कब कब बनता है, जब जब भारत की आर्थिक प्रगति बहुत तेजी से चलती है मोदी जी की अगुवाई में। आपने लेटेस्ट रिपोर्ट सब देखी होगी, चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट। तो बस, और इसमें तो गजब तमाशा देखने को आ रहा है साहब। कुछ लोग जो विदेशी कुछ इन्वेस्टर्स को लेके क्या क्या राग अलापते थे, आज उनका अभिनंदन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं, इंडिया इज नॉट ए बनाना रिपब्लिक, और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये देश न कभी झुका है न कभी झुकेगा। देश के हित में जो उचित फैसले लिए जाएंगे वो करेगा, और किसी की मोनोपोली को स्वीकार नहीं करेगा।
1: All right, that was the press conference of the BJP leader Ravi Shankar Prasad slamming the protests and the protesters and taking a dig at the opposition that they were trying to turn the entire national capital into chaos, and that is the reason police had to take the action that it did. The story and much more remains our top focus here on NDTV. For now, stepping into a very short break.

दुनिया एक नई दहलीज पर अनिश्चित अनसुलझी बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।

0: The CJP leaders as they were being detained on board the flight. The confrontation unfolded amid detention, with passengers openly expressing their anger. Listen in to what happened.
1: Shame on you.
2: जो लगाना है लगा दो. I am not afraid.
3: कचरा साफ स्वच्छ भारत अभियान.
4: 2 मिनट प्लीज. लोगों को उठाने के लिए दिल्ली पुलिस प्लेन में ही आ रही है. यू कैन सी इट. ऐसा तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में भी नहीं किया था. ऑल वी वांटेड टू डू इज अ पीसफुल प्रोटेस्ट.
2: दिस इज समथिंग नॉट इवन इंदिरा गांधी हैड डन. दिस इज डिक्टेटरशिप वेर दिल्ली पुलिस हैज एंटर्ड इन द फ्लाइट एंड ट्राइंग टू अरेस्ट अस. आ जाओ कर लो अरेस्ट. अरेस्ट होने के लिए आए हम. अरेस्ट होने के लिए आए. आ जाओ कर लो अरेस्ट. अरेस्ट होने के लिए आए सर. डरेंगे नहीं आपसे. वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू.
0: Meanwhile, the Delhi police has now released a video where they have stated the reasons for the denial or any kind of permission for the protests. Listen in.
5: जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है.

0: वेल डन किड्स, आज दिन की शुरुआत हुई है बच्चों की आवाज से, इससे खूबसूरत दिन कैसे हो सकता है?
1: एब्सोल्युटली आयुष्मान, और ना सिर्फ आज का दिन, ऑफ कोर्स इज गांधी जयंती, लेकिन इनका जुनून देख के, यू नो, सीइंग द एक्साइटमेंट इन देयर वॉइसेस, हमें ये पता है कि वी आर इन सेफ हैंड्स, आवर फ्यूचर जनरेशंस आर गोइंग टू कीप अस सेफ एंड हेल्दी. थैंक यू सो मच बच्चों,
0: थैंक यू किड्स,
1: बिग राउंड ऑफ अप्लॉज.
0: ये मुझे लगता है बनेगा स्वस्थ इंडिया से बनेगा मस्त इंडिया हो रहा है, क्योंकि हमारा भविष्य गाकर गया अभी सामने हमारे.
1: बिल्कुल सही कहा आपने.
0: नमस्कार, स्वागत है आप सबका. आज 2 अक्टूबर है, बापू का जन्मदिन है, वो इंसान जिन्होंने कहा था कि स्वच्छता आजादी से भी ज्यादा जरूरी है. और आज इसी दिन हम एक ऐसी कहानी का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो है पिछले 12 साल से लिखी जा रही है.
1: बिल्कुल सही आयुष्मान, वेलकम टू सीजन 13 ऑफ द एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन. नाउ मोस्ट कैंपेन्स कम एंड गो. आयुष्मान एक स्लोगन होता है, एक सीजन होता है, और फिर सब भूल जाते हैं. बट दिस वन हैज स्टेड, क्योंकि बदलाव एक दिन का इवेंट नहीं होता, बदलाव एक आदत है. एंड हैबिट्स ऑब्वियसली टेक टाइम. 13 years आयुष्मान इज व्हाट इट हैज टेकन टू टर्न एन आइडिया इनटू अ वे ऑफ लाइफ. और आयुष्मान ये सफर जब शुरू हुआ था, एक सिंपल से सवाल से शुरू हुआ था कि क्या हमारा देश भारत साफ हो सकता है.
0: और फिर इसका जवाब दिया आप लोगों ने, गांव की उन माओं ने जिन्होंने घर में टॉयलेट की मांग की, उन टीचर्स ने जिन्होंने क्लासरूम को बदलाव की पहली प्रयोगशाला बना दिया, उन बच्चों ने जो घर जाकर अपने पेरेंट्स को समझाने लगे, उन आशा वर्कर्स, सरपंचों और सैनिटेशन वर्कर्स ने जिनके बिना ये कहानी अधूरी है. मैं हमेशा उन कहानियों की तरफ खींचा गया हूं जिन पर लोग बात करने से कतराते हैं, चाहे टॉयलेट्स की बात हो, पीरियड्स, हाइजीन. ये कैंपेन भी वही करता है. इट स्टार्ट्स द कॉन्वर्सेशन India needs to have. We have a long way to go and we need to keep at it.
1: We do have a long way to go and we are keeping at it. Aishman, jaise COVID pandemic se puri duniya ne sikha ki swachh aur swasth dono saath hain. Humne dekha ki hygiene akela sirf kaafi nahi hai. Health obviously is the bigger picture. Aur isliye banega swachh India banega swasth India. Swachhta pehla kadam tha, swasthya manzil hai. Giving better health in more hands every day.
0: Yes, better health, क्योंकि अच्छी सेहत किसी का privilege नहीं है, हर हिंदुस्तानी का हक है. In more hands, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर्स या सरकार की नहीं, ये एक टीचर के हाथों में है, एक माँ के हाथों में है, एक बच्चे के हाथों में है, और हाँ, आपके हाथों में है, क्योंकि every day, क्योंकि सेहत एक दिन का जश्न नहीं है, रोज की आदत है, क्योंकि अब वक्त है कहने का, I am the change.
1: Absolutely, I am the change. और आपने बिल्कुल सही कहा, it begins with I am the change, जो आपने बिल्कुल कहा. But over the last 12 years, that belief has turned into a movement. So let's take a quick look at the journey that has brought us all here together.
2: पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, फिट इंडिया क्लीन इंडिया.

0: जन जागरूकता का संदेश जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस अभियान ने स्वच्छता कर्मियों के प्रशिक्षण से लेकर बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने तक अनेक सार्थक प्रयास किए हैं। मुझे गर्व है कि आज़ादी के दशकों बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लाल किले के प्राचीर से स्वच्छ भारत का आह्वान दिया और स्वच्छता के महत्व को समझाया। उनके नेतृत्व में शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान आज एक सशक्त जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष का थीम बेहतर स्वास्थ्य ज्यादा हाथों में मुझे अत्यंत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तम नेतृत्व में देश ने स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। 11 करोड़ से अधिक शौचालय निर्मित किए गए, 12 करोड़ से अधिक घरों तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाया गया, जहां पीढ़ियों से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों के निवास स्थान के निकट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। आयुष्मान भारत जो योजना है वो 61 करोड़ से अधिक नागरिकों को बीमारी के आर्थिक भार से सुरक्षा प्रदान कर रही है। यह संख्या यूरोपीय संघ के देशों की कुल आबादी से अधिक है। व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर नेटवर्क के माध्यम से 12 आवश्यक हेल्थ पैकेज दिए जा रहे हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान की वजह से भारत में हर साल सामने आने वाले टीबी के नए मामलों में 21% की कमी आई है और टीबी से होने वाली मौतों में 28% की गिरावट दर्ज की गई है। अपने दूरदर्शी नेतृत्व से प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों भारतीयों को एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है कि स्वस्थ समाज का लक्ष्य स्वस्थ सुविधाओं के विस्तार से और जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर प्राप्त किया जा सकता है। बनेगा स्वस्थ इंडिया अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। एक स्वस्थ और जागरूक नागरिक ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है। स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज और स्वस्थ भारत, यही विकसित भारत की मजबूत नींव है। मैं बनेगा स्वस्थ इंडिया की पूरी टीम को इसके लिए और उनके सहयोगी संस्थानों को 13वीं सीजन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए महात्मा गांधी जी के स्वच्छता और स्वस्थ समाज के सपने को साकार करने के लिए हम सब मिलकर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और विकसित भारत का संकल्प लें। जय हिंद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया नड्डा जी। कहीं ना कहीं सरकार का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के मिशन में प्राइवेट कंपनियां जुड़ती हैं, मीडिया जुड़ता है, लेकिन साथ ही साथ जब सरकार की ताकत लगती है तभी वाकई में ज़मीन पर इसका असर दिखता है। इट्स फैंटास्टिक टू बी हियर। आई वांट टू गो अक्रॉस टू क्रिस ले, सीईओ ऑफ रैकेट ग्लोबली। थैंक यू वेरी मच क्रिस फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर पार्टनरिंग विद NDTV इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट मिशन। वी आर ब्रॉडकास्टिंग लाइव अक्रॉस अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल एंड योर ऑर्गेनाइजेशन्स कोर मिशन has been better health in more hands every day. But every day is a massive logistical and behavioral hurdle. As viewers watch this telethon, how does Reckitt ensure that basic wellness doesn't remain a luxury for the urban and richest people all across the country, especially in those parts where they need it the most?
2: Well, the question for us is not how we reach 1.4 billion.

0: to do there is reduce that life expectancy gap that we have in sanitation workers with the rest of India. That's a big 10 years.
1: सुनो आप जो लोगों की मदद करते हैं उससे एक अलग आपकी इमेज बनती है ओवर एंड बियॉन्ड जस्ट बीइंग अ स्टार एंड अ फेमस पर्सनालिटी. आर यू आल्सो ट्राइंग टू एनकरेज अदर्स टू कम बिकॉज़ ए आपकी देखा देखी कोई लग जाए काम में जुड़ जाए. दूसरा ये कि आपको लगे कि नहीं वाकई में बॉलीवुड के या स्पोर्ट्स स्टार्स हों फिल्म स्टार्स हों ओटीटी स्टार्स हों सबको लगना चाहिए कि फिर एक सुन सुन नहीं 10-12 हो जाते हैं. आप कैसे तय करते कि क्योंकि इतने लोगों को मदद चाहिए आप कैसे तय करते कि किसकी मदद कर सकते हैं किसकी नहीं और किसको छोड़ दे नहीं कर पाए.
2: इतने सालों में राहुल एक मुझे लगता है ना हमारे अंदर एक ऐसा एक्सरे मशीन लग जाता है कि जैसे हम लोग बात करने लगते हैं तो हमें पता होता है कि ये कितना जेन्युइन केस है. आज भी मेरे ऑफिस या घर के सामने 200-300 लोग पहुँचते ही हैं और मैं जब शाम को निकलता हूँ तो उनसे जब मिलते हैं तो किसी की मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं किसी का एजुकेशन का प्रॉब्लम होता है. बट पिछले 6-7 सालों के अंदर एक नेटवर्क ऐसा बन गया है कि पूरे देश भर में छोटे छोटे जिलों के अंदर भी जहाँ पर किसी को पढ़ाई करनी हो इलाज करवाना हो बेड चाहिए सो फ़ोन करते हैं जुड़ जाता है. कोविड के दौरान करीबन 7.5 लाख लोगों से मैं कनेक्ट हुआ था जिनको घर भेजा था. आज वो 7.5 लाख जो लोग हैं वो मेरे वॉलेंटियर्स की तरह हैं कि अगर हमें यूपी में गोंडा जिला में किसी को पहुँचाना है तो मैं गोंडा दबाऊंगा तो वहाँ पे 10 कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे. फिर उनको फ़ोन करते हैं यार उसको ये पहुँचा दे. बिहार में किसी को भैंस पहुँचानी हो तो हम लोग ढूंढते हैं तो फिर लड़का एक भैंस ढूंढने जाता है कि कौन सी अच्छी भैंस है जो अच्छा दूध देती है और उसके साथ बछड़ा भी दिया जाता है ताकि उस जो बाढ़ में वो घर तबाह हो गया उसको एक रोजी रोटी मिल सके. तो बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल्स होती हैं. आज जब मैं सुबह यहाँ पर आ रहा था तो मैं जब सुबह उठा तो मुझे 5:30 बजे मेरा फ़ोन बजा. मैं उठने ही वाला था तो मैंने देखा कि एक किसी का कॉल आ रहा है. मैंने फ़ोन किया तो कहते सर मेरा भाई का जो बेटा है वो PGI लखनऊ के बाहर है उसको एडमिशन नहीं मिल रही और बहुत सीरियस है आप कीजिए. तो मैंने मैसेज डाला वहाँ पे डॉक्टर्स को तो 6:15 बजे मुझे फ़ोन आ गया और बाय द टाइम आई वाज कमिंग फ्रॉम माय हाउस टू दिस प्लेस उसका एडमिशन हो गया था एंड फाइनली ही इज़ गेटिंग ट्रीटेड. सो मकसद ये है कि शायद ऊपर वाला चुन लेता है कि ये कुछ कर दीजिए और फिर हो जाएगा एंड that makes your day very special. So I feel apne aap ho jata hai pata nahi but I ek bada the biggest lesson that I've learned in all these years is ki you know aap favors lene mein katraye mat. You know maine agar aapko ek phone kiya ki Rahul chaliye milke hum uski padhai kara dete hain
1: aisa mat mangna bas aisa nahi hai aur kuch ho to bataiye kya
2: usko ya usko channel mein kahin job lagwa de ya agar wo deserve karta hai agar wo deserve karta hai wo pehle hai to phir you know
3: aisa mangna kisi ye duniya mushkil hai.
2: So idea ye hai ki aap bhi jante hain ki aap मैं उनको बोलता हूँ कि भैया देखिए मैं इसको कभी जानता नहीं मिला नहीं हूँ लेकिन देख लीजिए अगर वो डिजर्व करता है. और कई बार ऐसे हो जाता है कि यू नो अपने आप वो डॉट्स जुड़ जाते हैं और वो इंसान अपने लक्ष्य पे पहुँच जाता है. सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू जॉइन दोस डॉट्स एवरी सिंगल डे एंड समवेयर गॉड इज डूइंग द ट्रिक.
4: गेट रेडी फॉर समथिंग रियली एक्साइटिंग. स्ट्रेंथ बैलेंस और इनक्रेडिबल मूव्स का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन मलखम्ब.

एक नई दहलीज पर अनिश्चित अनसुलझी बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।

0: उल्टा भी नहीं बोला, हमने प्रोटेस्ट में यही कहा कि भी यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखें।
1: अकेला था, मैं एक ही आदमी को रोक रहा था, लेकिन उसने मेरे को धक्का दे के, मेरे ये हाथ पे चोट लगी और कमर पे लगी हुई है, हमारी यहाँ जरूरत है, इसलिए मैं अभी हॉस्पिटल नहीं गया, लेकिन अब मैं
2: तो जाने की तब तक डटे हुए हैं जब तक, हालांकि चोट खा के भी आप डटे
1: हैं। अब बिल्कुल डटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हमारी जरूरत है।
3: We'll continue to track this story and much more here on NDTV. For now, slipping into a very short break.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित अनसुलझी, बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
2: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेंको गहने।
0: द शार्पेस्ट ग्लोबल वॉइसेस डीकोड अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स। डॉक्टर स्वर्णिम वागले, जनरल डेविड पेट्रियस, स्वामी सर्वप्रियानंदा, माइक वॉल्श, निकोलस बक्स एंड द एनडीटीवी वर्ल्ड समिट, अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, 22nd एंड 23rd अक्टूबर, ओनली ऑन एनडीटीवी। आफ्टर स्मैशिंग स्टार्ट, द एनडीटीवी एएम ग्रीन आईजीपीएल गोल्फ प्रो एम now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.
3: Welcome to the second edition of the NDTV World India Japan Summit.
4: Deep localization. What does it essentially mean for Maruti Suzuki?
5: To be competitive and to be agile for development and the resilience to any disruption. So that's how we set this deep localization as our next challenge.
6: How do you see the India-US relationship prosper?
7: I think what was an important basis. When people talk about God, they forget that it was an economic bonding. If you take a look at what happened around the COVID, the combination of these four countries and the way it went about, it was not a defense relationship.
6: Abe spoke about India and Japan having not only the ability but also the responsibility to shape the region.
8: Both nations, India and Japan, must work harder still to carry the torch of some of the basic fundamental values to shape the world to come.
6: How would you see India and Japan in particular want to see God evolve over the next

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: और शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित, अनसुलझी, बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
1: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
2: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड,
3: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
4: एक परिवार, अटूट भरोसा।
0: द शार्पेस्ट ग्लोबल वॉइसेस डिकोड अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स। डॉक्टर स्वर्णिम वागले, जनरल डेविड पेट्रियस, स्वामी सर्वप्रियानंदा, Mike Walsh, Nicholas Butts, and the NDTV World Summit, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, only on NDTV. After a smashing start, the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.
5: Welcome to the second edition of the NDTV World India Japan Summit.
6: Deep localization. What does it essentially mean for Maruti Suzuki?
7: To be competitive and to be agile for development and the resilience to any disruption. So that's how we set this deep localization as our next challenge.
8: How do you see the India-US relationship prosper?
9: I think God was an important basis. When people talk about God, they forget that it was an economic bonding. If you take a look at what happened around the COVID, the combination of these four countries and the way it went about, it was not a defense relationship.
8: Abe spoke about India and Japan having not only the ability but also the responsibility to shape the region.
10: Both nations, India and Japan, must work hard still to carry the torch of some of the basic fundamental values to shape the world to come.
8: How would you see India and Japan in particular want to see God evolve over the next decade?
11: What could be a catalyst rather than just a forbinger? What could be a facilitator?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
2: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेंको गहने।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
3: यू नो डिजाइन्स कितने हैं, लाख से भी ज्यादा डोर,
4: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
5: एक परिवार अटूट भरोसा।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: आफ्टर स्मैशिंग स्टार्ट, द एनडीटीवी एएम ग्रीन आईजीपीएल गोल्फ प्रो एम नाउ ट्रेवल्स टू हैदराबाद। अ न्यू कोर्स, अ न्यू कॉन्टेस्ट, अ न्यू सेट ऑफ कॉन्वर्सेशंस, वेयर द फाइनेस्ट इन गोल्फ meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.
2: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
3: Jab tak la jawab na ban jaye, usse nahi itminaan hai. अभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
1: दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित, अनसुलझी, बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026, दुनिया नई दहलीज पर, 22 और 23 अक्टूबर, नई दिल्ली।

0: second. The change is one thing. And if you're saying that everything was running very smoothly until the BJP changed this law, then how is it that there were 13 crore people who are ASDD, who are absent, duplicated, dead, are even present on the electoral roll? Aisa to nahi hai ki pichle 12 saal mein ye 13 crore log aa gaye hain. Obviously, they have been accumulating. This young lady is saying that her father's name has not been struck off for the last 16 years. Clearly, everything was not working beautifully even for the last 16 years, right? So, yes, there is one part where you're talking about how the election commissioner...
1: For it, firstly, who is accountable?
0: Whatever accountability you have to seek, you have BLO to seek through the law, right?
1: Harji ke paas to do martaba aa gaya. See, very simply.
0: Okay.
1: Yahan do martaba aa gaya, inke paas jo ek martaba bhi nahi hai.
0: Okay, just a second. Let's take a few more questions. Yes, go on.
1: Who is to do the accountability here?
2: Ek mera question hai sabse. Aap mein se kitne log first time voter ho, kiska vote ban gaya hai? Kitne log first time voters hain? मतलब एज जिनकी हो गई है फर्स्ट टाइम वोटर मतलब वोट जिनकी हो गई
0: और वोट आप लोगों का बन गया हाउ मेनी ऑफ योर फर्स्ट टाइम वोटर्स हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट योर वोटर कार्ड
3: हाउ मेनी ऑफ यू करो यार दिखाई नहीं दे रहा है हाउ मेनी ऑफ योर वोटर्स सो अबाउट
2: हाउ मेनी ऑफ यू आर ओवर 18 इयर्स ऑफ एज 18 साल से ऊपर के जो भी हैं हाथ खड़ा करिए एक बार
3: सो यू आर ऑल फर्स्ट टाइम वोटर्स
2: अच्छा अभी 18 से नॉट ले
0: हां तो आपका वोट बन गया है आपका वोटर कार्ड नहीं बना आपने कोशिश की
4: बनवाने की कोशिश की थी बट देयर मतलब मेरे जो डॉक्यूमेंट है मेरे फादर का जो डॉक्यूमेंट है उसमें हाँ. थोड़ा नेम का प्रॉब्लम है
0: हाँ.
4: मेरे फादर और मेरे जो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड है उनमें नेम का कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए आई ट्राइड बट उन्होंने कहा नहीं बनेगा जब तक चेंज नहीं करवाऊंगी लेकिन अगर मैं अपने फादर के उसमें डॉक्यूमेंट में पूरा चेंज करवाऊंगी तो फिर उनका जो प्रॉपर्टी और जो वो है वो सारा डिसबैलेंस हो जाएगा इस वजह से वो नहीं बन पाया
0: तो अभी आपका नहीं बना है वोटर
4: नहीं बना
2: नहीं तो आप अपने डॉक्यूमेंट चेंज कराएंगे
5: एंड दैट्स द चेंज इन द फिलॉसफी ऑफ द इलेक्शन कमीशन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर इलेक्शन कमीशन फिलॉसफी वॉज इंक्लूजन नाउ इट इज एक्सक्लूजन
6: हर्षवर्धन जी कितने लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कितना गड़बड़ होता है
1: तीसरी बार भी जो है आके जो चेक करके जाएंगे सर सही है
7: सीजेपी और ऑपोजिशन ने पहले ज्ञानेश कुमार को देशद्रोही और एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया लेकिन सर जब सेम लोगों से उमर खालिद और सरजील इमाम के बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि क्या वो एंटी नेशनल है तो कोई रिस्पांस नहीं आता वो कहते हैं कि कोर्ट डिसाइड करेगा
2: उनके दोस्त हैं
0: ओके वन मोर क्वेश्चन
1: होना चाहिए हम तो मांग कर रहे हैं
6: पर वो तो गद्दार है बिफोर डिसीजन पर उमर खालिद और सरजील इमाम देशभक्त है बिफोर डिसीजन
1: टू डिफेंड इलेक्शन कमीशन अभी टॉक इज इट
5: अभिजीत एंड हर्षवर्धन जी हैव गॉटन देयर फेवरेट बॉल एंड नाउ दे वांट टू प्ले डेमियन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन
1: दो जो अलग इलेक्शन कमीशन
0: ओके
1: उसने ऑब्जेक्शन करवाया था ना ऑब्जेक्शन किस चीज का था
0: लास्ट क्वेश्चन आई एम
1: दो अलग इलेक्शन कमीशन उनका
0: ओके लास्ट क्वेश्चन
1: मेंबर्स का
4: मायसेल्फ बिरवा
0: Just a second, madam. Yes, last question.
4: Myself, Birwa from Navrachna Vidyani, Vadodara. So I just want to ask you, today I am 17. Tomorrow I am going to 18, like next year. So should we trust the process? Should we vote? How do we get to know that our vote are going or not? How do we get it?
0: Okay. How do you trust the process when it is so...
2: May I take that?
0: Okay, go on. Okay, just a second. Yes.
5: That is what the opposition has been talking about. This is the first time in history that the Election Commission has such a loss of faith and trust that a first-time voter or a to-be first-time voter is asking, I don't know where my vote will go. That was never a question.
0: How do you fix this loss of trust? Last 10 seconds.
8: First advice to you, never trust any government. Congress government, BJP government, Republican government, Democrat government, any government... All governments, it is the systemic nature of all governments to oppress and to lie. Okay? That is why you have checks and balances on all governments.
2: Let me finish. Just ask it.
8: Now, there is a very simple thing out here. You have to tick all the boxes yourself. You have to keep all your documents ready at all points of time. Create as much of a trail as possible so that you can prove your case at any given point of time. There is no other way out. Full stop.
0: The binary is very simple. Process or protest. Which way do you think you are going to be able to achieve your ends? I think you've heard all the points of view. And for joining us today, thanks very much to our audience and to our panelists. Thank you.

0: दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित, अनसुलझी, बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।
1: यार लोन भूल गया मैरी। इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना।
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
3: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
1: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा,

0: दुनिया एक नई दहलीज पर, अनिश्चित, अनसुलझी, बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: The political face-off over the opposition's protests has intensified, with the Congress accusing the Modi government of attacking democracy and imposing an undeclared emergency. Rahul Gandhi has alleged vote theft and election theft, and also a crackdown on protesting youth. Priyanka Gandhi Vadra has accused the government of illegally detaining MPs and protesters and shutting down Delhi. BJP has hit back, accusing the opposition of trying to create anarchy and destabilize the country after electoral defeats. It says governance cannot be dictated from the streets and has challenged Rahul Gandhi over his allegation. Opposition is demanding accountability from the Election Commission, with INDIA bloc planning another protest march on Monday.
1: आज जो दिनभर से चला है और इसके पहले तीन दिन जो चला है, उससे दो बातें साफ साफ आई हैं. इंडियन डेमोक्रेसी हैज डिस्ट्रॉयड द क्वेस्ट फॉर एनार्की.
2: मोगैम्बो मोदी इज डिस्ट्रॉइंग इंडियाज डेमोक्रेसी.
3: जस्ट बाय कैरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन you do not respect the constitution. Your behavior and your actions speak for your respect for the constitution. Mr. Rahul Gandhi and his family and the members of his party from the president downwards need to apologize.
4: Is thane mein mushkil se 15-20 police wale bhi nahi hai aur jab bahar kai so log hain. मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, आपके थाने कम पड़ जाएंगे. इतने लोगों को कहां गिरफ्तार करोगे, आपके कहां आप लोगों को कंट्रोल करोगे. आप लोगों से पंगा लेना बंद करो, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा ले लो, वोट चोरी करना बंद करो. अगर आपने पंगा ले लिया, देश के युवा जिस दिन सड़कों पर उतर गए और उतर रहे हैं अब बहुत जबरदस्त तरीके से उतर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा.
5: आज पूरी तरह से ये कौन लोग हैं जिनको जनता ने नकार दिया, चाहे वो राहुल गांधी के इंडी गठबंधन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो और उनका सीजेपी हो. जनता ने जब इनको नकार दिया, लोकतंत्र ने इनको सजा दी, तो उस सजा को पचाने के, उससे सीखने के बजाय आपने इस देश को अस्थिर करने का मंसूबा बना दिया.
6: आई नेवर यूज्ड दिस प्रिजन वैन, इट इज फॉर द क्रिमिनल्स एंड द wanted people or unwanted people.
7: Criminal, like criminal.
6: Just criminals. With lock up everything. So, a protest, so with this protest, we have started dharna from here. Until unless our kidnapping time is end, we have started dharna.
0: And a protest plan in the national capital has triggered a major face-off, with the CJP alleging a crackdown on its Delhi Chalo march. Three CJP leaders, Abhijit Deepke, Saurav Das and Ashutosh Ranka, were detained after arriving in Delhi. They were reportedly taken to separate locations in Delhi, Gurugram and Dwarka. Deepke accused the authorities of dictatorship, alleging that Delhi police boarded his flight to detain him and other party leaders. CJP has vowed not to back down. In a statement, the party said its nationwide agitation would continue with or without its leaders, reiterating its demand for CEC Gyanesh Kumar to go. Police also detained protesters at several locations across Delhi, including Jantar Mantar, Connaught Place, as the march faced resistance from the police authorities. Send them out of the country, shame on you. These were the angry words that the passengers directed at the CJP leaders as they were being detained on board the flight. Have a look at this video.
8: भारत माता की जय.
9: शेम ऑन यू.
10: राजस्थान के एनएसए यूएनए जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो. आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड.
11: कचरा साफ स्वच्छ भारत अभियान. 2 मिनट प्लीज.
0: YouTuber Dhruv Rathi has been detained ahead of CJP's Jantar Mantar Chalo call. Rathi, who lives in Germany, had arrived in India a few days ago. He had posted a video from India Gate calling for action against CC Gyanesh Kumar. Sources tell NDTV Rathi was detained from his residence in Sector 56, Gurugram. They've also issued a statement, CJP, condemning Rathi's detention. They've demanded his immediate and unconditional release. A scuffle broke out during a CJP protest in Delhi with multiple police personnel injured in the clash. Visuals from the spot show police trying to control the situation as the protest turned chaotic. Police personnel were seen in a scuffle with protesters while some CJP supporters were detained. Stone pelting was also reported during the protests at Connaught Place. Visuals show protesters hurling stones at police personnel with mass protesters also seen carrying sticks. Women police personnel were also among those injured. The incident has left several policemen hurt, with the visuals capturing the clash and the police response during the protest.
7: क्या हुआ उतने देर में और क्या सिचुएशन थी यहाँ पे?
11: बस एक बजे के करीब भीड़ आई है उधर से गुरुद्वारा काबगंज की तरफ से इम्तियाज खान मार्ग पर, और वो शाउटिंग कर रहे थे और गाली गलौज दे रहे थे, है ना, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज भी यूज कर रहे थे, जो हमने किसी तरह वो बैरिगेट पे चढ़ाई की उसको तोड़ने लग गए, है नी। फिर हमने जो है ना वारिस पे मैसेज किया, री इन्फोर्समेंट आई है, यहाँ कम से कम 15-20 मिनट संघर्ष चला है, रोड ब्लॉक करने की कोशिश की, आम पब्लिक को परेशानी हो रही थी लेकिन हमने वो नहीं होने दी।
7: सर, आप लोगों को चोट भी आई है इस पूरे ऑल्टरकेशन में?
11: यहाँ सीजी हुई है ना, ये उंगलियों पे चोट लगी है, बैरिगेट भी गिर गए थे हमारे, है नी। लेकिन उसके बाद ही हमने अपना पेशेंस नहीं खोया और उनको प्रॉपर तरीके से, इवन वो बैरिगेट पे चढ़ गए थे, उन्होंने वो हमें लाते मार रहे थे लेकिन हमने उनको उतारा कि भाई इनको कोई चोट ना लग जाए, ऐसी इंजरी ना लग जाए, है कि नहीं, जिससे इनकी लाइफ को कोई खतरा हो जाए।
12: आपको हाथ मरोड़ा, क्या वो बाद में पकड़े गए या निकल गए थे वहाँ से?
13: सर, डिटेन तो किया है, अब मुझे ये नहीं पता था कि वो भीड़ में इतना नहीं पहचान सकती कौन सी लड़की थी वो, पर भीड़ में चोट लग गई थी मुझे उसी टाइम, उन्होंने हाथ वो गया था।
12: लगातार दिखने में आ रहा है कि जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, कितना मुश्किल और चैलेंजिंग हो रहा है इस दौरान ड्यूटी करना?
13: सर, ड्यूटी तो देखो हम अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे तब भी हमें अपनी ड्यूटी तो करनी है। लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई हमें ऐसे हमारे साथ ऐसी बदसलूकी ना करें, क्योंकि हम भी अपना परिवार भी संभाल रहे हैं, अपने ड्यूटी भी कर रहे हैं, किसी को उल्टा भी नहीं बोला हमने प्रोटेस्ट में, यही कहा कि भी यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखें।
14: अकेला था, मैं एक ही आदमी को रोक रहा था लेकिन उसने मेरे को धक्का दे दिया, मेरे ये हाथ पे चोट लगी और कमर पे लगी हुई है, हमारी यहाँ जरूरत है इसलिए मैं अभी हॉस्पिटल नहीं गया, लेकिन अब मैं
15: जाने तब तक डटे हुए जब तक, हालांकि चोट खा के भी आप डटे हैं, अब
14: बिल्कुल डटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हमारी जरूरत है।
0: India has entered the Fly Dubai investigation. The NIA has filed a terror case as Captain Smith recovers and Hamami's Australia links come under scrutiny. NIA has stepped in and will now examine whether Hamami acted alone or as part of a wider module and trace any international conspiracy behind the attack. The National Probe Agency has invoked sections under Anti-Hijacking Act and UAPA. Investigators are now piecing together Hamami's entire trail to establish whether he acted alone and how the alleged plot escaped multiple security checks. This is now a rare cross-border investigation combining criminal counter-terror aviation safety tracks across countries connected to the flight. Some latest news coming in. New images show Captain Smith in hospital. He's seen smiling with the head still bandaged. Captain Smith seen reading Herzog's letter. Israel President salutes Smith's courage. Israel President has thanked Smith for averting a major tragedy. That's the word coming in. The new images on your screen right now. We'll try and connect with my colleague as well to get more perspective on the story. But from across the world, wishes have been coming in. As far as Captain Smith is concerned, the entire world has been wishing him a speedy recovery. He also had a call with Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel. Prime Minister of India also gave him a call. Joining us on the broadcast is my colleague Aditya Raj Kaul to give us more perspective on the story. Aditya, wishes have been pouring in from across the world for Captain Smith. New images showing

एक नई दहलीज पर अनिश्चित अनसुलझी बदलते समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महामंथन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एनडीटीवी के महामंच पर बदलती दुनिया होगी डीको। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 दुनिया नई दहलीज पर 22 और 23 अक्टूबर नई दिल्ली।

0: was also reported during the protests at Connaught Place. Visuals show protesters hurling stones at police personnel, with mass protesters also seen carrying sticks. Women police personnel were also among those injured. The incident has left several policemen hurt, with the visuals capturing the clash and the police response during the protest.
1: क्या हुआ उतने देर में और क्या सिचुएशन थी यहाँ पे?
2: बस एक बजे के करीब भीड़ आई है उधर से गुरुद्वारा काबगंज की तरफ से इम्तियाज खान मार्ग पर, और वो शाउटिंग कर रहे थे और गाली गलौज दे रहे थे, है ना, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज भी यूज कर रहे थे। जो हमने किसी तरह वो बैरिगेट पे चढ़ाई की, उसको तोड़ने लग गए, है नी। फिर हमने जो है ना वारिश पे मैसेज किया, री इन्फोर्समेंट आई है, यहाँ कम से कम 15-20 मिनट संघर्ष चलाया, रोड ब्लॉक करने की कोशिश की, आम पब्लिक को परेशानी हो रही थी, लेकिन हमने वो नहीं होने दी।
1: सर, आप लोगों को चोट भी आई है इस पूरे ऑल्टरकेशन में?
2: यहाँ सूजी हुई है ना, ये उंगलियों पे चोट लगी है, बैरिगेट भी गिर गए थे हमारे, लेकिन उसके बाद ही हमने अपना पेशेंस नहीं खोया और उनको प्रॉपर तरीके से, इवन वो बैरिगेट पे चढ़ गए थे, उन्होंने वो हमें लाते मार रहे थे, लेकिन हमने उनको उतारा कि भाई इनको कोई चोट ना लग जाए, ऐसी इंजरी ना लग जाए, है कि नहीं, जिससे इनकी लाइफ को कोई खतरा हो जाए।
3: ने आपको हाथ मरोड़ा, क्या वो आप बाद में पकड़े गए या निकल गए थे वहाँ से?
4: सर, डिटेन तो किया है, अब मुझे ये नहीं पता था कि भाई वो भीड़ में इतना नहीं पहचान सकती कौन सी लड़की थी वो, पर भीड़ में चोट लग गई थी मुझे उसी टाइम, उन्होंने हाथ हो गया था।
3: लगातार दिखने में आ रहा है कि जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, कितना मुश्किल और चैलेंजिंग हो रहा है इस दौरान ड्यूटी करना?
4: सर, ड्यूटी तो देखो हम अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे, तब भी हमें अपनी ड्यूटी तो करनी है। लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई हमें ऐसे हमारे साथ ऐसी बदसलूकी ना करें, क्योंकि हम भी अपना परिवार भी संभाल रहे हैं, अपने ड्यूटी भी कर रहे हैं, किसी को उल्टा भी नहीं बोला हमने प्रोटेस्ट में, यही कहा कि भी यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखें।
5: अकेला था मैं, एक ही आदमी को रोक रहा था, लेकिन उसने मेरे को धक्का दिया, मेरे ये हाथ पे चोट लगी और कमर पे लगी हुई है, हमारी यहाँ जरूरत है, इसलिए मैं अभी हॉस्पिटल नहीं गया, लेकिन अब मैं
6: तो जाने तब तक डटे हुए हैं जब तक, हालांकि चोट खा के भी आप डटे हैं।
5: अब बिल्कुल डटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हमारी जरूरत है।
0: India has entered the Fly Dubai investigation. The NIA has filed a terror case as Captain Smith recovers and Hamami's Australia links come under scrutiny. NIA has stepped in and will now examine whether Hamami acted alone or as part of a wider module and trace any international conspiracy behind the attack. The National Probe Agency has invoked sections under Anti-Hijacking Act and UAPA. Investigators are now piecing together Hamami's entire trail to establish whether he acted alone and how the alleged plot escaped multiple security checks. This is now a rare cross-border investigation combining criminal counter-terror aviation safety tracks across countries connected to the flight. Some latest news coming in. New images show Captain Smith in hospital. He's seen smiling with the head still bandaged. Captain Smith seen reading Herzog's letter. Israel President salutes Smith's courage. Israel President has thanked Smith for averting a major tragedy. That's the word coming in. The new images on your screen right now. We'll try and connect with my colleague as well to get more perspective on the story. But from across the world, wishes have been coming in. As far as Captain Smith is concerned, the entire world has been wishing him a speedy recovery. He also had a call with Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel. Prime Minister of India also gave him a call. Joining us on the broadcast is my colleague Aditya Raj Kaul to give us more perspective on the story. Aditya, wishes have been pouring in from across the world for Captain Smith. New images showing him recovering well.
7: Well, certainly new images now coming in showing Captain Smith recovering very well. It's been a few days in the hospital ever since that really disaster that happened on the Fly Dubai flight on the 30th of September. And now the Israeli president has also written to Captain Smith Machar a personal letter, you know, praising his bravery. In fact, naming him as an Indian troop in action who saved the lives of countless people on board that flight. In fact, the Israeli president has also requested and urged Captain Smith to, in fact, travel to Israel, to Jerusalem, in fact, to receive the civilian top honor for his heroism from the Israeli government. This would be a rare occasion that an award that is mainly marked for an

0: The political face-off over the opposition's protests has intensified, with the Congress accusing the Modi government of attacking democracy and imposing an undeclared emergency. Rahul Gandhi has alleged vote theft and election theft, and also a crackdown on protesting youth. Priyanka Gandhi Vadra has accused the government of illegally detaining MPs and protesters and shutting down Delhi. BJP has hit back, accusing the opposition of trying to create anarchy and destabilize the country after electoral defeats. It says governance cannot be dictated from the streets and has challenged Rahul Gandhi over his allegation. Opposition is demanding accountability from the Election Commission, with INDIA bloc planning another protest march on Monday.
1: आज जो दिनभर से चला है और इसके पहले तीन दिन जो चला है, उससे दो बातें साफ साफ आई हैं. इंडियन डेमोक्रेसी हैज डिस्ट्रॉयड द क्वेस्ट फॉर एनार्की.
2: मोगैम्बो मोदी इज डिस्ट्रॉइंग इंडियाज डेमोक्रेसी.
3: जस्ट बाय कैरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन you do not respect the constitution. Your behavior and your actions speak for your respect for the constitution. Mr. Rahul Gandhi and his family and the members of his party from the president downwards need to apologize.
4: Is thane mein mushkil se 15-20 police wale bhi nahi hai aur jab bahar kai so log hain. मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, आपके थाने कम पड़ जाएंगे. इतने लोगों को कहां गिरफ्तार करोगे, आपके कहां आप लोगों को कंट्रोल करोगे. आप लोगों से पंगा लेना बंद करो, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा ले लो, वोट चोरी करना बंद करो. अगर आपने पंगा ले लिया, देश के युवा जिस दिन सड़कों पर उतर गए और उतर रहे हैं, अब बहुत जबरदस्त तरीके से उतर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा.
5: आज पूरी तरह से ये कौन लोग हैं जिनको जनता ने नकार दिया, चाहे वो राहुल गांधी के इंडी गठबंधन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो और उनका सीजेपी हो. जनता ने जब इनको नकार दिया, लोकतंत्र ने इनको सजा दी, तो उस सजा को पचाने

0: कि उससे सीखने के बजाय आपने इस देश को अस्थिर करने का मंसूबा बना लिया।
1: आई नेवर यूज्ड दिस प्रिजन वैन, इट इज फॉर द क्रिमिनल्स एंड द वांटेड पीपल और अनवांटेड पीपल।
2: क्रिमिनल लाइक क्रिमिनल,
1: जस्ट क्रिमिनल्स विद लॉक अप एवरीथिंग। So, a protest. So, with this protest, we have started dharna from here. Until unless our kidnapping time is end, we have started dharna.
3: And a protest planned in the national capital has triggered a major face-off with the CJP alleging a crackdown on its Delhi Chalo march. Three CJP leaders, Abhijit Deepke, Saurav Das and Ashutosh Ranka, were detained after arriving in Delhi. They were reportedly taken to separate locations in Delhi, Gurugram and Dwarka. Deepke accused the authorities of dictatorship, alleging that Delhi police boarded his flight to detain him and other party leaders. CJP has vowed not to back down. In a statement, the party said its nationwide agitation would continue with or without its leaders, reiterating its demand for CC Gyanesh Kumar to go. Police also detained protesters at several locations across Delhi, including Jantar Mantar, Connaught Place, as the march faced resistance from the police authorities. Send them out of the country, shame on you. These were the angry words that the passengers directed at the CJP leaders as they were being detained on board the flight. Have a look at this video.
4: भारत माता की जय।
5: शेम ऑन यू।
6: राजस्थान के एनएसए यूएनए जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो। आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड।
3: YouTuber Dhruv Rathi has been detained ahead of CJP's Jantar Mantar Chalo call. Rathi, who lives in Germany, had arrived in India a few days ago. He had posted a video from India Gate calling for action against CC Gyanesh Kumar. Sources tell NDTV Rathi was detained from his residence in Sector 56, Gurugram. They've also issued a statement, CJP, condemning Rathi's detention. They've demanded his immediate and unconditional release. A scuffle broke out during a CJP protest in Delhi with multiple police personnel injured in the clash. Visuals from the spot show police trying to control the situation as the protest turned chaotic. Police personnel were seen in a scuffle with protesters while some CJP supporters were detained. Stone pelting was also reported during the protest at Connaught Place. Visuals show protesters hurling stones at police personnel, with mass protesters also seen carrying sticks. Women police personnel were also among those injured. The incident has left several policemen hurt, with the visuals capturing the clash and the police response during the protest.
7: क्या हुआ उतने देर में और क्या सिचुएशन थी यहाँ पे?
8: बस एक बजे के करीब भीड़ आई है उधर से गुरुद्वारा काबगंज की तरफ से इम्तियाज खान मार्ग पर, और वो शाउटिंग कर रहे थे और गाली ग्लोज दे रहे थे, है ना, अन पार्लियामेंट लैंग्वेज भी यूज कर रहे थे, जो हमने किसी तरह वो बैरिगेट पे चढ़ाई की उसको तोड़ने लग गए, है नी। फिर हमने जो है ना वारिस पे मैसेज किया, री इन्फोर्समेंट आई है यहाँ, कम से कम 15-20 मिनट संघर्ष चला है, रोड ब्लॉक करने की कोशिश की, आम पब्लिक को परेशानी हो रही थी लेकिन हमने वो नहीं होने दी।
7: सर, आप लोगों को चोट भी आई है इस पूरे ऑल्टरकेशन में?
8: यहाँ सीजी हुई है ना, ये उंगलियों पे चोट लगी है, बैरिगेट भी गिर गए थे हमारे, है नी। लेकिन उसके बाद ही हमने अपना पेशेंस नहीं खोया और उनको प्रॉपर तरीके से, इवन वो बैरिगेट पे चढ़ गए थे, उन्होंने वो हमें लाते मार रहे थे लेकिन हमने उनको उतारा कि भाई इनको कोई चोट ना लग जाए, ऐसी इंजरी ना लग जाए, है कि नहीं, जिससे इनकी लाइफ को कोई खतरा हो जाए।
9: आपको हाथ मरोड़ा, क्या वो बाद में पकड़े गए या निकल गए थे वहाँ?
10: सर, डिटेन तो किया है, अब मुझे ये नहीं पता था कि भाई वो भीड़ में इतना नहीं पहचान सकती कौन सी लड़की थी वो, पर भीड़ में चोट लग गई थी मुझे उसी टाइम, उन्होंने हाथ हो गया था।
9: लगातार दिखने में आ रहा है कि जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, कितना मुश्किल और चैलेंजिंग हो रहा है इस दौरान ड्यूटी करना?
10: सर, ड्यूटी तो देखो हम अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे तब भी हमें अपनी ड्यूटी तो करनी है। लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई हमें हमें ऐसे हमारे साथ ऐसी बदसलूकी ना करें, क्योंकि हम

0: The political face-off over the opposition's protests has intensified, with the Congress accusing the Modi government of attacking democracy and imposing an undeclared emergency. Rahul Gandhi has alleged vote theft and election theft, and also a crackdown on protesting youth. Priyanka Gandhi Vadra has accused the government of illegally detaining MPs and protesters and shutting down Delhi. BJP has hit back, accusing the opposition of trying to create anarchy and destabilize the country after electoral defeats. It says governance cannot be dictated from the streets and has challenged Rahul Gandhi over his allegation. Opposition is demanding accountability from the Election Commission, with INDIA bloc planning another protest march on Monday.
1: आज जो दिन भर से चला है और इसके पहले तीन दिन जो चला है, उससे दो बातें साफ साफ आई हैं. इंडियन डेमोक्रेसी हैज डिस्ट्रॉयड द क्वेस्ट फॉर एनार्की.
2: मोगैम्बो मोदी इज डिस्ट्रॉइंग इंडियाज डेमोक्रेसी.
3: जस्ट बाय कैरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन you do not respect the constitution. Your behavior and your actions speak for your respect for the constitution. Mr. Rahul Gandhi and his family and the members of his party from the president downwards need to apologize.
4: Is thane mein mushkil se 15-20 police wale bhi nahi hai aur jab bahar kai so log hain. मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, आपके थाने कम पड़ जाएंगे. इतने लोगों को कहां गिरफ्तार करोगे, आपके कहां आप लोगों को कंट्रोल करोगे. आप लोगों से पंगा लेना बंद करो. ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा ले लो. वोट चोरी करना बंद करो. अगर आपने पंगा ले लिया, देश के युवा जिस दिन सड़कों पर उतर गए और उतर रहे हैं, अब बहुत जबरदस्त तरीके से उतर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा.
5: आज पूरी तरह से ये कौन लोग हैं जिनको जनता ने नकार दिया, चाहे वो राहुल गांधी के इंडी गठबंधन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो और उनका सीजेपी हो. जनता ने जब इनको नकार दिया, लोकतंत्र ने इनको सजा दी, तो उस सजा को पचाने के, उससे सीखने के बजाय आपने इस देश को अस्थिर करने का मंसूबा बना दिया.
6: आई नेवर

चीफ मिनिस्टर योगी एक्सेप्ट्स अखिलेश अयोध्या चैलेंज. योगी's काउंटर चैलेंज टू अखिलेश. चीफ मिनिस्टर सेज आई एम रेडी फॉर अ डायरेक्ट फाइट. विल अखिलेश यादव फाइल हिज नॉमिनेशन फ्रॉम अयोध्या. तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर मीट्स राहुल गांधी इन चेन्नई अहेड ऑफ कांग्रेस छात्रों की गूंज इवेंट. डीएमके स्लैम्स राहुल क्वेश्चंस कांग्रेस सिलेक्टिव आउटरेज ऑन एसआईआर. NIA formally steps into Fly Dubai horror probe. NIA has registered an FIR under Section 3 of the Anti-Hijacking Act and Section 16 of the UAPA, citing an apparent attempt to hijack or crash the aircraft. And Elon Musk hits out at Reliance Mukesh Ambani amid Starlink row, accuses him of exploiting the people of India and blocking Starlink.

0: और दूध का दूध पानी का पानी करने का झूठा वादा करने वाले का पानी जनता उतार देगी इस बार।
1: आज वो अयोध्या एक बार फिर से राम राज्य के नए उदाहरण बनकर के त्रेता युग का स्मरण करा रही है और मैं तो आपको ऑफर करता हूं, आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं। तय हो जाए, आप भी आइए और मैं भी आता हूं। लड़ाई चेलों से क्यों, लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए और उसके लिए मैं कह रहा हूं आइए आप भी।
2: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.
3: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.